वेलकम बैक रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एम पर सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस। आप सोच रहे हैं कि मैं क्यों हंस रही हूँ, क्योंकि एक बहुत खूबसूरत बात याद आई है। देखिए, अपनी जिंदगी से, अपनी लाइफ से हम सब स्ट्रेस रिलीज करना चाहते हैं, उसे हटाना चाहते हैं। और देखिए, कहीं ना कहीं दूसरों को स्ट्रेस में देखकर अच्छा लगता है। अगर आप भी उनमें से हैं जो अपना स्ट्रेस कम करके दूसरों का बढ़ाना चाहते हैं, तो एक काम कीजिए, जिसका बढ़ाना है ना, उसे सुबह सुबह व्हाट्सएप पे 10 मैसेज सेंड कर दीजिए, और 2 मिनट बाद, देखिए देख ना ले वो, उसके पहले वो 10 मैसेज आप डिलीट फॉर एवरीवन कर दीजिए। उसके बाद उसका स्ट्रेस बढ़ेगा और आपका कम होगा, क्योंकि

यही सोच के परेशान होगा, भाई ऐसा क्या लिखा था, ऐसा क्या भेजा था जो बंदे ने डिलीट कर दिया, है ना। तो बस ऐसे छोटी छोटी बातों में खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्ट्रेस को दूसरों तक पहुंचाते रहिए और अपना कम करते रहिए। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्पानी, सताक्षी के साथ आप सुन रहे हैं इट हैपेंस।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है। ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार।
3: जो मैं कहने जा रही हूँ वो आपको पता है, बट स्टिल उसे बार बार रिमाइंड करवाना बहुत जरूरी होता है कि जिंदगी में कभी भी दो चीजें जो हाथ से निकल जाएं वो लौट कर वापस नहीं आती हैं। एक मुंह से निकले हुए लफ्ज और दूसरा हाथ से निकला हुआ वक्त। लफ्ज माफ हो सकते हैं लेकिन उनका असर नहीं। उनका असर कहे गए इंसान पे हमेशा रहता है, और वक्त वक्त हमेशा सिखाता है लेकिन वापस कभी नहीं आता है। इसलिए बोलने से पहले हमेशा सोच लिया करिए, और जीने से पहले कभी रुकिएगा नहीं, या ये कहूँ जीते जी कभी रुकिएगा नहीं, क्योंकि पछतावा तो होगा लेकिन मौका दोबारा नहीं मिलेगा, ना जीने का और ना ही कहे गए लफ्जों को वापस लेने का। क्या बोलती जनता। एक और ट्रैक सदाक्षी के साथ सुनिए और सुनते रहिए ठापन्स रेडियो ब्रिस्बेन 1701 FM पर।

कभी नोटिस किया है कि हम लोगों के लिए चाहे जितना कर दें, कहते जाएं और हम करते जाएं, हम उनकी ज़रूरत के वक्त चाहे हमेशा खड़े रहें। जब तक आप ये सब करते हैं ना, आप उनके लिए बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब आप किसी एक बात के लिए भी उन्हें मना कर देते हैं, बस तभी सब कुछ बदलने लगता है। पल भर में उनकी सोच आपके लिए बदल जाती है, पीठ पीछे आपके बारे में बातें होने लगती हैं, और वही लोग जो कल तक आपकी तारीफ करा करते थे, आज आपकी कमियां गिनाने लगते हैं। और उस दिन समझ में आता है कि प्रॉब्लम आपकी ना नहीं थी, जिस बात के लिए आपने उनको ना कह दिया, प्रॉब्लम उनकी ये थी कि वो हमेशा आपसे हाँ सुनने के आदि थे। इसलिए हमेशा हर बात पर अवेलेबल मत हो जाया करिए, हमेशा हर बात पर हाँ मत कहा करिए, लोगों को आदत हो जाती है। सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो बृसवानी पर सताक्षी के साथ।

लोग होते हैं ना जो बस थोड़ी सी बात आपसे करते हैं, दो चम्मच बातचीत, और उसके बाद आपसे झट से एक सवाल करते हैं, दोस्ती करोगे? देखिए, उनसे एक सीधा सा सवाल कर लीजिए। मैंने तो आजकल यही पूछना शुरू किया, क्योंकि हर दूसरे इंसान का यही है, यार हम दोस्त हो गए भाई, जरा सी बातचीत में किसी से दोस्ती होती है क्या भाई? हम तो दोस्त बड़े चुन के बनाते हैं, है ना। देखिए, हमारे आप जैसे दोस्त हैं ना, तो उनसे जरूर पूछिए कि दोस्ती तो हम कर लेंगे, मगर तुम निभा पाओगे? फिर कहीं ऐसा ना हो कि बाद में बात करते हैं बोल कर फिर बातचीत ही बंद हो जाए, मिलने का बोल कर आप फाइटर जेट से ज्यादा बिजी हो जाएं। हम तो भाई तुम्हारी प्रॉब्लम में साथ खड़े रहे हैं, मगर जब हमारी बारी आए तो तुम्हारी खुद की कई सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएं। मैं कॉल करूं तो तुम्हारा फोन बिजी आए, और फिर कॉल बैक करना तो छोड़ो, बेशर्मी से ये मत बोल देना कि सॉरी यार मैंने तुम्हारा कॉल ही नहीं देखा। तो इसलिए भाई हम तो दोस्त सोच समझ के बनाते हैं, तुम देख लो तुम हमारी दोस्ती अफोर्ड कर पाओगे कि नहीं। एक और ट्रैक सताक्षी के साथ सुनिए, और यूं ही सुनते रहिए ठाकुर रेडियो ब्रसवानी पर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.
2: ਵਧੇਰੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਧੇਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ 98,000 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਘਰ ਜਲਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ $2 billion ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ 4100 hectares ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
3: आज सुबह जब मैं रीड कर रही थी, मेरी आदत है सुबह सुबह 2 पेज तो कम से कम पढ़ने की, सो आज जब रीड कर रही थी तो एक ऐसी लाइन पढ़ी जो दिल को छू गई। तो कुछ यूँ लिखा था कि जो हम देते हैं वो हमेशा वापस नहीं आता, पर जो हम देते हैं वो ये ज़रूर बताता है कि हम कौन हैं। कभी आपने किसी को समय दिया, प्यार दिया, परवाह दी, बट बदले में आपको कुछ नहीं मिला। ऑफकोर्स दर्द होता है जब हमें रिटर्न नहीं मिलता है, पर जो आपने दिया वो आपकी फितरत थी। आप ऐसे ही हैं और इसीलिए लोग क्या देते हैं ये उनका चरित्र, उनका कैरेक्टर है, मगर आप क्या देते हैं ये आपकी रूह को दिखाता है। इसलिए लोग चाहे आपके साथ जो भी कर रहे हैं, आप देना बंद मत कीजिए। आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, खुद को किसी के लिए बदलिए नहीं। सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्थानी 1701 AM।

0: पर दोस्तों ये था आज सताक्षी के साथ इट हैपेंस पर मॉर्निंग का एक और जबरदस्त और प्यारा सा साथ। आई होप कि आपको मजा जरूर आया होगा। तो बस जिंदगी के ये जो प्यारे से जज्बात और ढेर सारे अरमान है ना, इनके साथ कल सुबह फिर से मिलूंगी आपसे इसी सफर इट हैपेंस में। आज के अब इस प्रोग्राम से, इस सफर से इजाजत लेती हूँ, क्योंकि अब आपको अपने सपनों की ओर बढ़ना है, अपने अरमानों को जीना है और अपने एक बेहतर दिन की शुरुआत करनी है। सो चलिए हम और आप कल सुबह मॉर्निंग में मिलते हैं। टिल देन कीप शाइनिंग, कीप स्माइलिंग, हैव अ ग्रेट डे। नमस्कार।
1: पैसा, अरे मनी मनी, लगता है अपना भी टाइम फाइन है।

मैं हां संदेश अलक शर्मा तुसी सुन रहे हो रेडियो ब्रिस्वानी 101.1 एम ते जविला हो चुके हैं हुन तक दी हम खबरां दा ता फिर चलो करते हैं शुरुआत। रुक करदे पंजाब दे वल जिथे कांग्रेसी विधायकां ने सदन की कार्रवाई शुरू होने तो पहला विधानसभा के बाहर सूबा सरकार खिलाफ बेअदबी मामलों में इंसाफ विच देरी नूं लैके प्रदर्शन किया। विरोधी धिर दे आगू प्रताप सिंह बाजवा विधायक सुखविंदर कोटली बलविंदर सिंह धालीवाल समेत काफी सारे होर उथे आगू मौजूद रहे जिन्होंने बेअदबी मामले विच दोषियों नूं सजा ना दवाए जाण नूं लैके आम आदमी पार्टी की सरकार खिलाफ नारेबाजी करते हुए सदन विच प्रवेश किया। उन्हां दोष लगाया कि बेअदबी मामलों विच दोषियों नूं अजे तक सजा ना मिलना ते पीड़ितों नूं इंसाफ तों वांझा रखना आप सरकार की सब तों वड्डी नाकामी है। उन्हां कहा है कि बैबल कलां कोटकपूरा ते बरगाड़ी बेअदबी मामलों विच मजबूती नाल पैरवी करन दी बजाय सरकार ने सारे केस पंजाब तों बाहर तब्दील कर दिते। उधर भारत की मशहूर तहलका मैगजीन के सबका संपादक तरुण तेजपाल 2013 के गोवा जिनसी शोषण मामले में दोषी ठहराया गया। बंबे हाई कोर्ट की गोवा बैच ने 2021 के सैशन कोर्ट के फैसले को उल्टा दिया। तेजपाल दोषी ठहराते हुए 10 साल की कैद की सजा सुनाई। इस फैसले से राहत प्रकट करते हुए पीड़िता की मां ने कहा कि साल की कानूनी लड़ाई तो बाद इस फैसले ने उसे भारी बोझ तो राहत दी है। उसने कहा कि मेरे मन तो एक वड्डा बोझ उतर गया है। इस साल बहुत दर्दनाक सन। इन्ने साल तक हिम्मत बनाई रखने लिए बहुत ताकत की लोड़ सी। उधर इस मामले ते सजा सुनाए जाने बाद पत्रकारों नाल गल करते हुए 62 साल तरुण तेजपाल ने कहा है कि पिछले 13 साल तो उन्हां नाल बदले की भावना नाल पेश आया जा रहा है। उन्हां कहा है कि मैनू पूरी न्यायपालिका ते विश्वास है कि एक जज होवेगा जो सच्चाई नूं देखेगा। असीं सारे सबूत जनता के सामने पेश करांगे। मेरे कोल 10 बार अपनी बरी नूं जायज ठहराउण लई काफी सबूत हन। अपना पक्ष स्पष्ट करते हुए तेजपाल ने कहा है कि उह हुण फैसला विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट विच अपील करेंगे। दस दिन कि आखिर पूरा मामला की है तो पूरी घटना नवंबर 2013 की है। तहलका मैगजीन ने गोवा विच थिंक फेस्ट नामक एक सालाना समागम करवाया से। इस समागम दौरान तरुण तेजपाल ने 7-8 नवंबर नूं होटल दी लिफ्ट विच एक जूनियर साथी दा 2 वार जिनसी शोषण किया। शिकायत तो बाद उस नूं नवंबर 2013 दे अखीर विच गिरफ्तार कर लिया गया सी। शुरू विच तेजपाल ने इस घटना लई अफसोस प्रगट किया ते इस नूं स्थिति दी गलतफहमी दा कारण दस्सिया पर बाद विच अपना दावा वापस लै लिया ते इस नूं एक राजनीतिक साजिश कहा सी। उधर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जे गल करिए नरेंद्र मोदी ने वीडियो नूं हटाउण नूं लैके मैटा दीआं मुश्किलां लगातार जारी हन। इह विवाद वीरवार नूं भी जारी रहा। मैटा की ग्लोबल टीम ने भारतीय कानूनां की पालना नूं लैके केंद्र सरकार नाल चर्चा की। रिपोर्ट अनुसार मैटा की ग्लोबल टीम दे भारत विच 3-4 दिन होर रहण दी उम्मीद है। इस समय दौरान उन्हां दीआं सरकारी अधिकारियां नाल होर मीटिंगां इन मीटिंगां विच वट्सएप नाल संबंधित मुद्दयां ते भी चर्चा होण दी संभावना है। सरकार मैटा दे एलगोरिथम समग्री संचालन पालना अभ्यासां जांच अते संतुलन अते सुरक्षा उपावां बारे जानकारी मांग रही है जिस विच बाल जिनसी शोषण समग्री अते डीपफेक समग्री दा मुकाबला करन लई वरते जांदे सिस्टम शामिल हन। रिपोर्ट अनुसार केंद्रीय अधिकारी ने कहा है कि अमरीकी कानूनों के आधार पर प्लेटफॉर्म नूं भारत विच नहीं चलाया जा सकता। यह तकनीकी मामले हैं ते हर पहलू नूं समझना महत्वपूर्ण है। उन्होंने अगे कहा है कि सारिया संस्थावां वांग सारे प्लेटफॉर्मां दीआं समाज ते कानून प्रति जिम्मेवारियां हन। उधर भारत ने पुलाड़ खोज विच एक होर माणमत्ता पल प्राप्त किया। भारती मूल दे नासा पुलाड़ यात्री अनिल मैनन ने वीरवार नूं अंतरराष्ट्रीय पुलाड़ स्टेशन तो बाहर निकलते हुए अपनी इतिहासिक पहली स्पेसवॉक पूरी की है। यह उन्हां दे करियर विच एक वड्डा मील पत्थर है। अनिल मैनन दे नाल इस 6.5 घंटे दे औखे मिशन विच नासा दे तजर्बेकार पुलाड़ यात्री जैसिका मेयर भी शामिल हुई जो अपने 6वें करियर दे स्पेसवॉक कर रही सी। इकट्ठे मिलके उन्होंने स्पेस स्टेशन दे पावर सिस्टम नूं अपग्रेड करन दा महत्वपूर्ण काम किया।
ਉਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋਏ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਰ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਅਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਸੁੱਟੇ ਅਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅਹਿਮ ਖ਼ਬਰਾਂ ਵਿਚ ਬਸ ਇਨਾ ਹੀ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੀ ਈਮੇਲ ਆਈਡੀ ਹੈ ਬਿਸਵਾਨੀ@ਬਿਸਵਾਨੀ.com। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਰੇਡੀਓ ਬਿਸਵਾਨੀ 107.1। ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਜ਼ਾ ਤਰੀਨ ਖ਼ਬਰਾਂ ਲੈ ਕੇ। ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

0: खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वनों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारत ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
1: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलां विच अग लगदी है। ऐ तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समां है। जंगल दी अग तों बचाव दी योजना बनाओ ता जे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल घर छड्ड के जाण वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रधारपजित। एक बार फिर सतरंगी पिंग आस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन ब्रिस्बेन
4: सैटरडे 15 अगस्त 6:30 PM।
2: मिलते हैं जी ब्रिस्बेन
4: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। Tickets at Premier Tickets.
5: The 2026 census is coming this August. The census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra. It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
6: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.
7: I.

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare and transport. When you take part, you help make sure your language, culture and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.umsorg.co.in है। भारत में

0: भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है, भारत में नंबर

0: भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।
2: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिस कर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विलेज शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
3: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only, consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.

हाँ जी, वेलकम बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 एम ते जी आज के संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। अगला जिहड़ा नाम हैगा इस लिस्ट विच ओ तां हदल चहेता है क्योंकि उन्हां दा 2.5 किलो का हाथ कौन भुल सकता है। जी हाँ, नाम है जी सानी देओल दा। अपने 2.5 किलो के हाथ दे लई मशहूर सानी देओल दा असली नाम अजय सिंह देओल है। जद उन्हां ने फिल्म विच डेब्यू किया तां मेकर्स अते उन्हां ने मिलके स्क्रीन नेम सनी चुनिया। उस दौर विच मन्या गया हैगा है कि यह नाम दर्शकां दे विचकार ज्यादा कैची कूल अते फ्रेंडली लगेगा। वक्त दे नाल यह नाम लोगों की जुबान ते इस कदर चढ़ गया कि अज फैंस तां दूर इंडस्ट्री विच भी शायद ही कोई उन्हां नूं उन्हां दे असली नाम दे नाल बुलांदा होवेगा।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।
2: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरनमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

0: जी आयन जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा थोड़े अपने चाहते वाले रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 107.1 FM ते 4-6 संदेश अलग दिनाल से बने हुए। अगला जेड़ा नाम है वह है जो बहुत ही खूबसूरत जी अदाकारा दा 90s दी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत अदाकारा है ते आज भी एवरग्रीन है उन्हीं खूबसूरती बरकरार है। नाम है जी तबू। जी हाँ, अपनी बेहतरीन अदाकारी दे लई मशहूर एक्ट्रेस तबू दा नाम पहला कुछ होर सी, थोड़ा औखा सी, पर मैं तुहानूं दस दिंदी हां नाम सीगा जी तबसुम फातिमा हाशमी। जद उन्होंने फिल्मों में एंट्री ली ना तो अपने इस वड्डे नाम नूं छोटा करके तबू रख लिया। उन्होंने लग्या कि वड्डे पर्दे दे लिहाज नाल ये नाम काफी क्रिस्प छोटा ते एक मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस वाला रहेगा। नाम बदलण दा यह फैसला फिल्म मेकर्स दे लई मार्केटिंग दे हिसाब नाल काफी सौखा रहा ते इस नाल उन्होंने यूनीक पहचान भी बनी रही।
1: हाँ जी, मुंडा सदुआ दा

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद।

0: हाँ जी जी आया रुझी पर बेड़ा हो चुके हैं तो टाटा बाय बाय कहता जी आया फिर भी कह लिया क्योंकि एक नाम बहुत इंपोर्टेंट सी जिस बारे थानू दसना बेहद जरूरी सी। मैं सोचा जान तो पहला उन्होंने बारे थानू दस ही देनी है तो नाम है जी रेखा। जी हाँ बॉलीवुड की आवर क्रीन ब्यूटी रेखा ता असल नाम रेखा नहीं सी, असल नाम सी जी भानु रेखा गणेशन। उन्होंने जब उन्होंने सिनेमा की दुनिया विच कदम रखिया ना तो उन्होंने अपना नाम छोटा करके सिर्फ रेखा रखना पिया। ये नाम ना सिर्फ बेहद सिंपल अते एलीगेंट सी बल्कि आम दर्शकों के लिए इस नूं याद रखना भी काफी सौखा सी। अगे चल के सिर्फ एक नाम वाली अनोखी पहचान भारतीय सिनेमा के इतिहास विच सब तो आइकोनिक शख्सियतां विचों एक बार की हैगी है। इस गल दे नाल तां मेरे ख्याल सारे ही सहमत ने। बाकी थोनू के कौन एक्टर है जिसका असली नाम ज्यादा वधिया लग्या हैगा है चेंज किते हुए नालों वो तुसी सानू जरूर दस्यो। रेडियो ब्रिसोनी 101.1 साडा फेसबुक पेज है जी brisoni@brisoni.com साडी ईमेल आईडी है जरिए जेड़ा भी अपनाउणा अपनाओ पर साडा गलबात जरूर करते रहा करो है ना। तां फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो ते मैं हुणे वापस आउनी आ ना कल वापस आउनी आ करन दे लई ठेर सारियां गलां ते चलो फिर जाण वेले इक्को गल कहणी है कि रखो अपना ख्याल सत श्री अकाल।
1: Show mercy on it.

0: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more, and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899. And quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Morgill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.
1: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
2: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
1: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
2: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड पीवा देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं, 100% पीवा क्रीम से, 99.9% पीवा मिल्क फैट से। और तो और, हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
1: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ, मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
2: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
3: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400-664-435 पर। याद रहे 0400-644-35 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
4: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है, सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।
5: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन का निवेश कर रही है, ता जो क्वींसलैंड भर विच 98,000 नवे घरां दे निर्माण दा राह खोलिया जा सके। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।
6: Hi, this is Amitabh Bachchan.
7: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
8: Hi guys, I'm Manmeet from the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
9: Hi, this is Salman Khan.
10: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
11: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी।
12: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Alia.
13: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Briswani से।
14: To everyone tuning into Radio Briswani, this is Shahrukh Khan.
15: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Briswani।

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स और असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।
2: क्वींसलैंड विच हर साल जंगलों विच अग लगती है, ए तुहाडे परिवार अते घर नूं तैयार करन दा समा है। जंगल दी अग तो बचाव दी योजना बनाओ, ताजे हर कोई जान सके कि की करना है। अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नूं सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकार

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

0: बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: वधेरे किफायती रिहायश की शुरुआत वधेरे घरां दी उपलब्धता नाल हुंदी है। इसे लई नवी क्वींसलैंड सरकार सूबे भर विच 98,000 तो भी वध नवे घरां दे निर्माण दा राह खोल रही है। असी होर घर जल्दी बनाउण लई बुनियादी ढांचे विच $2 बिलियन दा निवेश कर रहे हां। असी रिहायश लई 4100 हेक्टेयर तो वध जमीन उपलब्ध करवा दिती है। लोड़वंदा लई 53,500 समाजिक अते कम्युनिटी घर मुहैया करवा रहे हां। इस तो अलावा होर भी योजनावां तैयार हन। अ प्लेस टू कॉल होम खोजो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारत, ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बाकी से जो परसों पर झूठे को आराम न आए, लेकिन सच्चे को पल भर में कांटों पर भी नींद आ जाए। ऐ दोस्त ऐ दोस्त ऐ दोस्त।

हमने बढ़कर उसका साथ दिया, गिरते को यहाँ किसने थामा, किसने उसको हार दिया। ए दोस्त ए दोस्त ए दोस्त।

0: कहानी बुरी नहीं थी इश्क की मेरे, बस तेरे जैसे कुछ किरदार धोखेबाज निकले।
1: क्वींसलैंड दी नवी सरकार ब्रिस्बेन लई वड्डे काम पूरे कर रही है। असी 50 सेंट दे किराए पक्के तौर उते लागू कर दिते हन। असी होर भी वल डॉक्टर मुहैया करवा रहे हां अते प्रिंस चार्ल्स अते रॉयल ब्रिस्बेन वर्गे हस्पतालां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। 1600 होर पुलिसकर्मी अते होर सख्त कानून लिया रहे हां। स्थानीय स्कूल अते खेड क्लबां विच वड्डे सुधार लिया रहे हां। नाल ही 2032 अते उस तो भी अग्गे दे समय वास्ते एक नवी खेड इमारत जिस विच एक नेशनल एक्वाटिक सेंटर अते एथलीट विले शामिल हन जो के अग्गे चल के रिहायश लई वरती जावेगी। असी तुहाडे लई होर की मुहैया करवा रहे हां इस बारे जानो। डिलीवरिंग फॉर क्वींसलैंड सर्च करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वलों अधिकारित। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों की कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रोग्राम शुरू हो गया है, इवनिंग वाइब मेरे अनियार्शे निवे के साथ, एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जी हाँ, मंडे का दिन है और मंडे हमारे लिए जबरदस्ती चीजें लेकर आता है, लेकिन इन अ डिफरेंट सेंस। जी हाँ, सुकून हमें उतना नहीं मिलता है, लेकिन अगर हमें अपने प्यार मतलब काम से मोहब्बत है, हम प्यार करते हैं अपने काम से, हमने उसी ही फील्ड को चुना है जिसमें हम बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते थे, तो फिर ये काम हमें बुरा नहीं लगेगा। और अगर हम खुद एंटरप्रेन्योर हैं, खुद हमने कोई बिजनेस क्रिएट किया है, खुद हम अपने किसी ड्रीम को अचीव करना चाहते हैं, तो भी हमें मंडे नहीं बुरा लगेगा। मतलब ऑफकोर्स जो एम्प्लॉयर्स होते हैं उनको मंडे कभी भी बुरा नहीं लगता, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको मंडेज बुरे लगते हैं। बट द थिंग इज़ कि एम्प्लॉयज़ को अगर एम्प्लॉयर बनना है तो उनको मंडे अच्छा लगना चाहिए, और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। आप कितना भी इससे दूर भागने की कोशिश करोगे, यही यही सच्चाई है। जी हाँ, तो दोस्तों आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। और प्रोग्राम की शुरुआत जो है और कैसे होती है आपको पता ही है, लेकिन इनकेस आपको नहीं पता है मैं बता दूं, प्रोग्राम की शुरुआत होती है अच्छी लंबी गहरी सांसों के साथ। और उसके पीछे रीजन ये है कि डीप ब्रेथ और ब्रीदिंग एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही अच्छे से काम करती है। बेसिकली हमें काम फील करवाती है, हमें शांत फील करवाती है, केओस को हमारे अंदर जाने से जो है वो बचाती है, और हम अपने डिसीजंस को अच्छे से ले पाते हैं, शांत मन से ले पाते हैं और सोच समझ कर ले पाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्योंकि गुस्सा या कोई भी स्ट्रेस या कोई भी एंजाइटी, कुछ भी तरह की जो ऐसी चीज़ है, वो डिसीजन मेकिंग में गड़बड़ कर सकती है। तो वही डीप ब्रेथ एक्सरसाइज को हम करेंगे, उस एक्सरसाइज को, और फिर उसके बाद हम करने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें। जी हाँ, सो आइए सबसे पहले क्या बात है, अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है। और ऐसे ही अच्छा फील करते करते यहाँ पर एक बढ़िया से गाने के साथ शुरुआत करेंगे। गाने का नाम है रूबरू, और ये रूबरू गाना जो है वो एक बहुत ही लेजेंडरी मूवी का है, और ये लेजेंडरी मूवी आमिर खान की मूवी है। क्या आप गेस कर सकते हैं? आप लोग बोलोगे कि आमिर खान ने अपने करियर में बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त मूवीज दी हैं, तो वी कैन ओनली इमेजिन कि कौन सी मूवी के बारे में बात हो रही है। वेल, ये वो कोई नई मूवी नहीं है, बल्कि काफी पुरानी है, और इसका गाने का नाम है रूबरू। जी हाँ, और रूबरू आप सुनिए और गेस कीजिए कौन सा मूवी है ये, और इसी के साथ फिर और भी बात करते हैं हम आपसे।

कृपया ध्यान दें, दिल्ली से मुंबई आने वाली गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 12 के बदली प्लेटफॉर्म नंबर 36 पे आएगी।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे अनि आरजे नेविया के साथ। दोस्तों, हंसी मजाक तो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर हम आपको जो बताने वाले हैं उसको आप ध्यान से सुनिए और आप सोच लीजिए कि क्या क्या ये AI नहीं कर सकता है। मतलब ये ऐसी चीजें कर रहा है जो कि अच्छी तो थी ही, लेकिन अब गड़बड़ भी वो कितनी कर सकती हैं उसकी भी कोई लिमिट नहीं है। सो AI हैज टेकन अ मेजर स्टेप इनटू बायोलॉजी। जी हाँ, AI ने क्रिएट किए हैं 16 नेवर बिफोर सीन वायरसेस। जी हाँ, एंड हाउ डेंजरस कुड इट बी? या इट कैन बी वेरी वेरी डेंजरस, वे मोर लीथल, वे मोर डेंजरस देन COVID-19। जो COVID-19 हमने देखा ना, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब आप लोगों के दिमाग में चल रहा होगा, तो किसने कहा AI को ऐसा करने के लिए? Well, ये AI ने खुद नहीं किया है, बल्कि साइंटिस्ट ने AI से करवाया। आप लोग बोलोगे ये साइंटिस्ट को कुछ अच्छा काम नहीं करने के लिए, कोई अच्छा काम कर लो, है ना? मतलब ये बुरी चीजें क्यों कर रहे हो? मतलब एक नए नए वायरस ढूंढने की क्या जरूरत है? अच्छी चीजें कीजिए। ज्यादा खाना हम कैसे उगा सकते हैं और बहुत सारी चीजें, मतलब उन चीजों को कीजिए जैसे ह्यूमन काइंड और जितने भी और क्रिएचर्स हैं इस दुनिया में उनका भला हो सके। मतलब नए वायरसेस जो ऑलरेडी हैं उन्हीं से हम परेशान हैं नए वायरसेस को पैदा करने के लिए। क्या रीजन था? मतलब क्या चल रहा था दिमाग में? जी हाँ, लेकिन यही हुआ है। So, जैसे मैंने कहा, AI has taken a major step into biology. Scientists used generative AI to design 16 new bacteriophages. जी हाँ, और ये viruses जो हैं that had never been found in nature and are capable of attacking bacteria. जी हाँ, and the breakthrough could help scientists develop new ways to fight drug resistance F infection. जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि निव्या शर्मा ये तो इतना बुरा नजर नहीं आ रहा। वेल ऑफकोर्स, जैसे मैंने कहा कि ये चीज जो है वो खतरनाक है, लेकिन साइंटिस्ट ने इस चीज का जो इस्तेमाल किया है वो इसलिए किया है कि जो ड्रग रेजिस्टेंट इन्फेक्शंस हो जाती हैं, जो बैक्टीरियाज जो है, जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जो है वो पैदा कर लेते हैं, उससे कैसे निपटा जाए, इसलिए नए वायरसेस को बनाया गया, नए बैक्टीरियाज को तैयार किया जा रहा है और फिर उनसे कैसे निपटा जाए मेडिकल तौर पर, उसके लिए उन्होंने अपेरेंटली ये किया। अब आप लोग बोलोगे कि तो फिर ठीक है निवेश शर्मा, तुमने इतना क्यों डराया हमको? मतलब ये तो अच्छी बात है कि मतलब अच्छी चीज हो रही है, एंड रिजल्ट इज गुड, सो इफ एंड इज वेल ऑल इज गुड, राइट? बट द थिंग इज कि दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। There are many countries, many political leaders and many bad people जो कि इन चीजों का इस्तेमाल गलत तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे कि आप सबको पता ही है कि COVID-19 भी कोई natural crisis नहीं थे, वो भी man-made crisis थे, और ये बात हमें अब पता चल रही है। जी हाँ, अब जाकर, क्योंकि अब इस चीज के बारे में बात हो रही है। लेकिन इससे पहले कोई कैसे पता कर सकता था कि बिल गेट्स और बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं इस वायरस को पैदा करने के लिए पीछे हैं? जी हाँ, अब यहां पर भी जो जनरेटिव AI का जो है वो इस्तेमाल किया गया है इन वायरसेस को बना के, एंड ऑफकोर्स साइंटिस्ट ने इसे इसलिए बनाया ताकि जो है इससे अच्छी चीज की जा सके, मेडिकल फील्ड में अच्छे से इनको यूज करके, इन पे रिसर्च करके जो है वो लोगों का कल्याण भला किया जा सके। बट द थिंग इज कि अगर ऐसी चीजें पैदा की जा रही है तो बुरे लोग भी ये चीज कर सकते हैं और इन्हीं वायरसेस का इस्तेमाल गलत चीज करने के लिए कर सकते हैं, एंड दैट इज द प्रॉब्लम। यहां पर एक और गाना आप सब के लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा खबरों की दुनिया का रुख करते हैं। जी हाँ, सबसे पहले शुरुआत करने वाले हैं हम तूफान से। जी हाँ, और ये तूफान जो कि डॉल्फिन नाम का है, जो कि अब जापान के बाद चीन में दस्तक दे चुका है। जी हाँ, चीन में तूफान डॉल्फिन ने दी दस्तक, जो कि पहले जापान को परेशान कर रहा था। 10 लाख से ज्यादा लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए गए। चीन के पूर्वी हिस्से में तूफान डॉल्फिन के दस्तक देने के बाद 10 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। तूफान के चलते राजधानी शंघाई समेत कई इलाकों में जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग के मुताबिक डॉल्फिन तूफान ने रविवार शाम करीब 5:30 बजे झेजियांग प्रांत के युहुआन में पहली बार दस्तक दी। इस दौरान तूफान की अधिकतम रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच गई। इसके करीब 1 घंटे बाद तूफान ने वेंजोउ शहर में दूसरी बार लैंडफॉल किया। तूफान के कारण अकेले शंघाई में करीब 1400 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। इससे बड़ी संख्या में यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। चीनी अधिकारियों ने तूफान डॉल्फिन को लेकर पहले सबसे उच्च स्तर की रेड अलर्ट चेतावनी जारी की थी। हालांकि सोमवार सुबह इसकी तीव्रता कम होने के बाद अलर्ट को घटा दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार तूफान अब चीन के अंदरूनी इलाकों की ओर बढ़ रहा है और अधिकारियों ने बुधवार तक मूसलाधार बारिश, बाढ़ और भूस्खलन की आशंकाओं को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। शानडोंग, हेनान, हुबेई, अनहुई, जियांगसू, झिनजियांग प्रांतों के साथ शंघाई में सोमवार को भी भारी बारिश का अनुमान जताया गया है और स्थानीय प्रशासन ने लोगों से गैर जरूरी कामों के लिए बाहर ना जाने की अपील भी यहां पर की है।

जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 107.1 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। इसी के साथ दोस्तों, अब जरा बात कर लेते हैं इसराइल की। जी हाँ, खबरों की बात हो रही है। इसराइली मीडिया का दावा है कि खुफिया एजेंसी मोसाद ने दो सीनियर अफसरों को हटाया है, और वजह क्या है आइए जरा जानते हैं। सो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद के चीफ रोमन गफमैन ने अपने दो वरिष्ठ अधिकारियों को उनके पदों से हटा दिया है। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन दोनों अधिकारियों ने ईरान की सरकार को सत्ता से हटाने का कथित प्लान तैयार किया था, जो नाकाम साबित हुआ। इजरायली चैनल 12 की रिपोर्ट के अनुसार हटाए गए अधिकारियों में से एक दिसंबर 2015 से मोसाद के इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का प्रमुख था, जबकि दूसरा अधिकारी एजेंसी के ईरान मामलों से जुड़े विभाग का प्रमुख था। हालांकि इजरायली मीडिया की रिपोर्ट में दोनों अधिकारियों के नाम सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अधिकारियों ने ईरान की सरकार को सत्ता से हटाने के लिए एक ऑपरेशनल प्लान तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। कथित तौर पर इस योजना में कुर्द समूहों की मदद लेने और पूरे ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन को भड़काने की रणनीति शामिल थी। इजरायली मीडिया के अनुसार इसी योजना का जिक्र पहले द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में भी किया गया था। दावा है कि इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी ये योजना दिखाई थी। उस समय नेतन्याहू ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के लिए राजी करने की कोशिश कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक इस योजना के दौरान तैयार होने के समय मोसाद के प्रमुख डेविड बार्निया थे। बार्निया की जगह जून 2026 में रोमन गॉफमैन ने ले ली है।

जी दोस्तों, इसी के साथ हमास ने किस बात पर अमेरिका से कहा कि नेतन्याहू पर दबाव डाले। जी हाँ, तो अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि कैसे अमेरिका ने मध्यस्थता करके एक ऐसी डील साइन करवा ली है हमास और इसराइल के बीच में, जहां पर हमास जो है वो अपने हथियार छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, अपने हथियार जो है वो सरेंडर करने के लिए तैयार हो गया है, और यहां पर सब कुछ अच्छा होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन उसके बाद एक दिन बाद ही इसराइल के हमले जो है वो गाजा में होते हुए फिर से नजर आते हैं। अब ऐसे में वो हुआ या नहीं हुआ समझौता, वो एक ही बराबर था। अब यहां पर हमास ने अमेरिका से कुछ कहा है। जी हां, हमास के एक वरिष्ठ अधिकारी ने अमेरिका से इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू पर दबाव डालने की अपील की है, ताकि गाजा पीस प्लान के अगले चरण को लागू किया जा सके। हमास के राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य बासिम नईम ने FAAFP से बातचीत में कहा कि अमेरिका इस समझौते का गारंटर है, और ऐसे में उसे नेतन्याहू और उनकी सरकार पर पीस प्लान के रोडमैप को लागू करने के लिए दबाव बनाना चाहिए। बासिम नईम ने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि मध्यस्थ देश और अमेरिका बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी सरकार पर दबाव डालेंगे, क्योंकि यही समझौते के गारंटर हैं। दरअसल इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गाजा को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 15 पॉइंट पीस प्लान को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। नेतन्याहू ने कहा है कि जब तक हमास को पूरी तरह निरस्त्र नहीं किया जाता, तब तक गाजा से इजरायली सेना की वापसी नहीं होगी। नेतन्याहू ने रविवार को हुई कैबिनेट बैठक में कहा कि इजरायल 15 पॉइंट डॉक्यूमेंट में खारिज करता है इजरायली सेना अपने सैनिकों और नागरिकों के लिए पैदा होने वाले खतरों को रोकने के लिए कार्रवाई जारी रखेगी। उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब गाजा में युद्ध विराम को लेकर इसराइल और हमास के बीच मतभेद बने हुए हैं। दोनों पक्षों के बीच इजरायली सेना की वापसी को लेकर असहमति भी यहां पर बनी हुई है।

क्या बात है, मतलब जीना मतलब पीना, ये क्या बात हो गई। बट गाना है भाई, गाना है और गाना जबरदस्त है। मतलब अगर हम कॉम्पोजिशन के बारे में बात करें, लिरिक्स की बात करें तो वो भी अच्छे हैं, लेकिन आपको तो पता ही है कैसे फैंटेसाइज किया गया है हमेशा से लिकर को। बट लिकर इज बैड एंड दैट्स इट, पीरियड, दैट्स ऑल यू नीड टू नो। जी हाँ, इसी के साथ ऑस्ट्रेलिया में ट्रैवल करना थोड़ा सा महंगा हो सकता है, एंड पर्टिकुलरली अगर आप जेट स्टार की फ्लाइट्स जो है वो लेते हो, तो फिर ये थोड़ा सा कॉस्टली हो सकता है स्टार्टिंग फेब्रवरी। जी हाँ, फेब्रवरी की स्टार्टिंग से ये कॉस्टली हो सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि ये क्या हुआ। वेल वेल वेल, आप लोग बाकी सारी चीजों में मशगूल रहे और यहाँ पर जेट स्टार ने एक नया कारनामा कर दिखाया। वेल, जेट स्टार इज नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव एयरलाइन एंड इट्स सपोज टू बी चीप, बट द थिंग इज कि अब उन्होंने अपने आप को नॉर्मल कैटेगरी में डालने का कहीं ना कहीं प्लान कर लिया है। मतलब जो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल एयरलाइन थी, अब उन्होंने नया कारनामा कर दिया है जिसकी वजह से वो अफोर्डेबल शायद ना रहे। जी हाँ, सो कैरी ऑन बैग्स के लिए अब आपको पे करना पड़ सकता है। अगर आप कैरी ऑन बैग्स लेकर जाते हो जेट स्टार की फ्लाइट में, तो फरवरी की स्टार्टिंग से, यानी कि फरवरी 2027 की स्टार्टिंग से आपको उसके लिए अलग से पे करना पड़ सकता है। अब आप लोग बोलोगे कि एलओजी क्यों हो गया। जी हाँ, मतलब क्यों हो रहा है ये तो बताओ। वेल, अपेरेंटली जो कंपनी ने बहाना दिया है और रीजन दिया है वो ये है कि लोग जो है वो कैरी ऑन बैग्स लेकर जाते हैं और फिर कैरी ऑन स्पेसेस के लिए झगड़ते हैं और उस झगड़े की वजह से न्यूसेंस क्रिएट होता है, और उस न्यूसेंस से बचने के लिए हमने डिसाइड किया है कि अगर आपको कैरी ऑन बैग चाहिए ही और आप उसको लेकर जाना चाहते हो और आपको वो स्पेस चाहिए जिसमें आप उस कैरी ऑन बैग को रख सको, तो ठीक है, सीधा सीधा पे कर दो उसके लिए। और अगर आप पे नहीं करोगे तो आप नहीं रख सकते उस स्पेस में। जो पे करेगा वो स्पेस को यूज कर सकता है, जो नहीं करेगा कैरी ऑन बैग के अलग से स्पेस के लिए जिसने उसके के लिए चार्जेस ना दिए हो, वो नहीं कर पाएगा। जी हाँ, अब आप लोग बोलोगे कि एलो जी, उनको बड़ी फिक्र है लोगों की लड़ाई की, है ना। वेल, उनको फिक्र हो या ना हो लड़ाई की, बट यहाँ पर जो चीप एयरलाइन थी, जो कि अफोर्डेबल एयरलाइन थी, अब वो इतनी अफोर्डेबल शायद ना रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस न्यू थिंग। जी हाँ, सो या जैसे मैंने कहा कि कैरी ऑन बैग्स के लिए अगर आपको स्पेस चाहिए तो उसके लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा फ्रॉम 2027 फरवरी स्टार्टिंग। एंड या दिस इज इट। यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: excuse me, may I? Some matches are made in heaven and some are made at weddings. Every wedding is special. Think weddings, think Roy Singh. From the grand ballroom to your childhood backyard to a faraway beach, the big day comes in all sizes and styles, and that is why I'm proud that you have trusted me with your civil wedding, and I cannot wait to help you create yours. Contact me, Roy Singh, today on 0411-022-602, 0411-022-602, or email me at roylindrasingh@gmail.com. Think weddings, think Roy Singh.
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best, विरे। अतुल भारद्वाज जी नू अजी कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ। ते लॉ दी एंट्री केसेस नू हैंडल करन जी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वद्दा रिच एक्सपीरियंस। ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज विच वी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Sat Sri Akal, madam, namaskar, dosto, main hoon toda Pradhan Pandit. Ek baar phir सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
4: द लेजेंड हरभजन मान लाइव इन क्रिस्टन
5: सैटरडे 15th अगस्त 6:30 PM
3: मिलदी है जी ब्रिस्बेन विच
5: एट ब्रिस्बेन सेंट्रल ऑडिटोरियम माउंट क्रवाट। टिकट्स एट प्रीमियर टिकट्स।
6: फायर एंट्स तुहाडे इलाके विच मौजूद हन। जे तुहानू लगदा है कि तुहाडे घर जां जायदाद विच फायर एंट्स हन, ता इस दी सूचना दिओ। असी तुहानू फायर एंट्स दे इलाज लई मुफ्त किट भेजांगे। होर जानकारी लई फायर एंट्स क्वींसलैंड जां फायर एंट्स QLD खोजो जां 132 ANT यानी के 132-268 उत्ते कॉल करो। ए सुनिया क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन वालों अधिकारित है। ऑथराइज्ड बाय द क्वींसलैंड गवर्नमेंट ब्रिस्बेन। ਨਵੀਂ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਇਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
7: जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। शो चल रहा है इवनिंग वाइब मेरे यानी आरजे निविया के साथ। दोस्तों, इसी के साथ मैं वापस आऊंगा। मूवी जो है वो OTT पर आ गई है, और कौन से प्लेटफॉर्म पर ये आ गई है इसके बारे में तो मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये मूवी क्यों स्पेशल है और इसके बारे में मैं क्यों बात कर रही हूँ। सो ये मूवी इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये एक लव स्टोरी पर बेस्ड है जो कि ट्रैजिक है इन अ वे, लेकिन बहुत ही खूबसूरत भी है, मतलब ट्रैजिकली ब्यूटिफुल है। जी हाँ, ये आप कह सकते हो। इस फिल्म में बहुत सारे कलाकार, फेमस कलाकार आपको देखने को मिलेंगे। वेदांग रैना आपको मिलेंगे, शर्वरी बाग आपको मिलेंगी, साथ में आपको दिलजीत दोसांझ भी मिलेंगे। आपको म्यूजिक मिलेगा AR रहमान का, आपको डायरेक्शन मिलेगी इम्तियाज अली की, आपको लिरिक्स मिलेंगे इरशाद कामिल के, और आपको बहुत ही खूबसूरत गायकी भी सुनने को मिलेगी जबरदस्त जबरदस्त आर्टिस्ट की। स्टोरी के बारे में बात करें तो ये स्टोरी जो है वो आपको इमोशनल फील करवाएगी, आपको ऐसी फीलिंग्स जो है वो फील होंगी, एंड देयर इज नो वे कि आप इस मूवी को देखोगे और आपके आंखों में आंसू नहीं आएंगे। सो ऑफ कोर्स बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। एंड इट्स अ स्टोरी अबाउट अ लव स्टोरी जो कि हुई बहुत ही खास वक्त पे, और वो खास वक्त जो है वो बहुत अच्छा वक्त नहीं था, खास इन अ नॉट अ वेरी हैप्पी वे। जी हाँ, जब भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, लोग जो हैं उनको अपने घरों को छोड़कर जाना पड़ा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई, और पार्टीशन पर बेस्ड जितनी भी मूवीज़ हैं वो सारी हमेशा जो है वो आपको रुला कर जाती है। देर आर मैनी पीपल जो कि आज भी उसके बारे में बात करते हैं और आंखों में उनकी आंसू आ जाते हैं। बट ऐसे में जब जो प्यार करने वाले थे दो, वो बहुत प्यार में थे, लेकिन उनको अलग होना पड़ता है क्योंकि दो वतन अलग हो जाते हैं, और उस वजह से फिर बाद की स्टोरी कैसे अनफोल्ड होती है वही कहानी है। जी हाँ, अब जिसकी प्रेम कहानी है उसके पोते का कैरेक्टर जो है वो दिलजीत दोसांझ प्ले कर रहे हैं और नशीरुद्दीन शाह का कैरेक्टर जो है वो प्ले कर रहे हैं वेदांग रैना। जी हाँ, आप देखिए इस मूवी को और आप इमोशनल फील करोगे, तो आप ये मत बोलिएगा कि नहीं भैया क्या सेंटी सी मूवी हमें बता दी। सो ऑफकोर्स मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि यू आर गना फील इमोशनल, बट इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी, सो इट्स अ हाईली हाईली रिकमेंडेड मूवी, गो फॉर इट। नेटफ्लिक्स पर रिलीज हो चुकी है 7 अगस्त को और देखिए और फिर मुझे बताइए आपको कैसी लगी। इसी के साथ यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

मस्त बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साए से खेलो, चाहे कली से प्यार करूं।

0: बहारों का मैं आशिक, मैं जो चाहे यार करूं, चाहे फूलों के साथ खेलूं, चाहे कली से प्यार करूं, सारा जहां है मेरे लिए, मेरे लिए।
1: जी हां दोस्तों, और ये गाना आपने सुना और इसका मतलब भी आपको समझ आ ही गया होगा। आप लोग बोलोगे कि हाँ, लिरिक्स का मतलब हमें समझ आ गया, और क्या समझना था? वेल, समझना ये था कि अब वक्त हो गया है कि यही वाले गाने आपके लिए प्ले होने वाले हैं। जी हाँ, मतलब कि अब वक्त हो गया है ओल्ड इज गोल्ड सेगमेंट का, एक ऐसा सेगमेंट जो हमारे दिल के बहुत ही करीब है, क्योंकि अब हम पूरी तरह से पुराने गाने प्ले करने वाले हैं। नो न्यू सॉन्ग एंड दैट्स हाउ वी गोना डू इट। जी हाँ, इजंट इट ग्रेट? या आई नो। एंड द थिंग इज कि ये वाला जो सेगमेंट है वो मेरे और मेरे लिसनर्स के दिल के बहुत ही ज्यादा करीब है, क्योंकि हम सबको पसंद है पुराने गाने, उनका लिरिक्स, उनके म्यूजिक और उनके लिरिक्स और उनकी गायकी, सब कुछ जो है हमें बहुत ही खूबसूरत लगता है। सो आइए बिना देर किए शुरुआत करते हैं सेगमेंट की। अगर आपके पास कोई फरमाइश है तो भेज दीजिए, और यहाँ पर हमारी तरफ से एक बहुत ही प्यारा सा गाना आप सबके लिए।

जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ यहाँ पर आपको पता ही है, प्रोग्राम का जो है वो बहुत ही खूबसूरत और स्पेशल सेगमेंट जो है वो शुरू हो गया है, एंड दैट इज ओल्ड इज गोल्ड। नाउ ओल्ड इज गोल्ड में हम आपको किस्से भी सुनाते हैं पुराने। जी हाँ, सुनील दत्त साहब का की पिक्चर का ये गाना है, और मैं आपको बता दूं कि सुनील दत्त साहब जो है वो लिटरली एक बहुत ही अच्छे इंसान रहे हैं। जी हाँ, मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो आर्टिस्ट होने के साथ बहुत ही जबरदस्त शख्स होते हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि सुनील दत्त साहब की पेरेंटिंग से लेके उनके जो भी लोग उनसे मिलते थे वो उनकी शख्सियत के फैन हो जाते थे, उनकी पेरेंटिंग के फैन हो जाते थे। जैसे जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी को लीड किया, जैसे उन्होंने नरगिस को वो किया, जी हाँ, मतलब कभी किसी के साथ प्यार का कोई भी किस्सा जो है वो उनका फेमस नहीं हुआ पहले। जी हाँ, उनको नरगिस पसंद थी और नरगिस को उन्होंने जीता भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से। जी हाँ, और ये वही कहानी है जिसके बारे में शायद आपने सुना हो, लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो हम आपको आज बताने वाले हैं। जी हाँ, ये वही वक्त था जब नरगिस को ये पता चल गया था कि राज कपूर उनके लिए नहीं है, बल्कि कोई और उनके लिए है। सेट में एक जगह पर आग लग जाती है और वहां नरगिस जो है वो फंस जाती है। गेस वॉट, कोई स्टंटमैन नहीं, कोई फिल्म का क्रू नहीं, कोई उनको बचाने के लिए उस आग में कूदने के लिए एज सच तैयार नहीं था। ऑफकोर्स लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई उसमें कूद कर नरगिस को बचाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन यहाँ पर आते हैं द रियल लाइफ हीरो सुनील दत्त। जी हाँ, सुनील दत्त आते हैं और उस आग में, जी हाँ, उस खतरनाक सी आग में घुस जाते हैं, नरगिस को निकालते हैं, एंड गेस व्हाट, नरगिस को अपनी जिंदगी का वो राजकुमार, नाइट इन द शाइनिंग आर्मर मिल जाता है जिसकी उन्हें तलाश थी। जी हाँ, हम सब ये जानते हैं कि कैसे उनकी करीबियत जो है वो राज कपूर के साथ बहुत ज्यादा थी, और बहुत वक्त तक जो है वो उन्होंने उनके साथ जो है वो रिश्ता निभाने की कोशिश भी की। वो राज कपूर के प्रोडक्शन हाउस में एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टर भी थी, लेकिन एक चीज जो उन्हें पता चल गई थी कि राज कपूर उनके लिए नहीं है लेकिन कोई और है, क्योंकि उस वक्त जो आग में कूद कर उनको बचाने के लिए तैयार हो गया वो कोई नॉर्मल इंसान तो हो नहीं सकता। जी हाँ, एंड दैट वॉज द रीजन नरगिस ने सुनील दत्त से शादी के लिए हाँ की। जी हाँ, सुनील दत्त को तो नरगिस पहले से ही पसंद थी, लेकिन नरगिस ने उस दिन सुनील दत्त को उन्होंने एक डिफरेंट लाइट में देखा, एंड दैट्स हाउ दिस वंडरफुल लव स्टोरी गॉट अनफोल्डेड। जी हाँ, मतलब ये खूबसूरत सी कहानी जो कि सुनील दत्त और नरगिस की है वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। फिल्म के सेट पर उन्होंने अपनी रियल लाइफ फिल्म बना दी। जी हाँ, यहाँ पर एक और गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी दोस्तों, पहली मोहब्बत भी क्या कमाल चीज है। जी हाँ, पहली मोहब्बत ऐसी होती है जैसे कि आपके दिल में कोई कांटा चुभता है, लेकिन वो कांटा चुभता है पर दर्द नहीं होता, मजा आता है। जी हाँ, मतलब कांटा चुभता है लेकिन दर्द नहीं होता, मजा आता, वैसी होती है पहली मोहब्बत। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मुकम्मल हो जाती है, जिनको जीवन साथी के तौर पर अपनी पहली मोहब्बत ही मिल जाती है, लेकिन बहुत सारे, उनसे बहुत सारे और कहीं ज़्यादा लोग हैं जिनको अपनी पहली मोहब्बत मिलती नहीं है, और वो पहली मोहब्बत जो है एक खूबसूरत याद की तरह जो है वो उनके जहन में, उनके सीने में हमेशा हमेशा के लिए रह जाती है। और ये हम सबके साथ हुआ है, आई मीन हम सबके साथ तो हुआ ही है, राइट? आप भी अग्री करोगे इस बात से। बट अगर मैं आपको बताऊं कि धर्मेंद्र यानी कि द ही मैन ऑफ बॉलीवुड जो है वो भी इससे अछूते नहीं रहे, तो क्या आप मानेंगे? जी हाँ, वेन एवर इट कम्स टू पहली मोहब्बत ऑफ बॉलीवुड स्टार्स, जी हाँ, हिंदी फिल्म जगत के उन सितारों की पहली मोहब्बत की बात होती है, तो देवानंद साहब का नाम जो है वो बहुत ऊपर आता है। बिकॉज देवानंद साहब को सुरैया से मोहब्बत थी, और उसके बारे में उन्होंने बहुत ही, मतलब सबके सामने जो है इसके बारे में बताया है, तारीफ करते करते बताया है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि ही मैन ऑफ बॉलीवुड यानी कि धर्मेंद्र की पहली मोहब्बत कौन थी। जी हाँ, ऑफ कोर्स उनकी पहली बीवी नहीं है, कोई और थी। धर्मेंद्र ने उनके बारे में खुद ही बताया, वो बताते हैं कि मैं स्कूल में पढ़ा करता था तब, और तब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, मतलब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जो है वो अभी बना नहीं था, तो मेरे स्कूल टीचर की बेटी हुआ करती थी, नाम था हमीदा। जी हाँ, वो मुझे देखती और मुस्कुराती तो मैं उसके पास चला जाता। जी हाँ, अगर वो मुझसे कुछ पूछती तो मैं कुछ ऐसा कह जाता जिसका मतलब ही नहीं बनता। अगर वो सर झुका लेती या नजरें झुका लेती तो मैं शर्मशार हो जाता। जी हाँ, और ये मैं खुद नहीं कह रही हूं, ये धर्म जी ने यानी कि ही मैन ऑफ बॉलीवुड ने खुद कहा है। जी हाँ, धर्म जी कहते हैं कि हमीदा जो भी कहती थी मैं बस सुनता रहता था, मुझे समझ नहीं आता था मैं क्या कहूँ कैसे कहूँ, मुझे वो बहुत ही अच्छी लगती थी। जी हाँ, जब भी मैं थोड़ा सा ऐसे बैठा होता था, सोच में डूबा होता था, तो हमीदा मुझे कहा करती थी, अरे धर्म तू परेशान मत हो, अभी तेरे इम्तिहान में वक्त है, सब ठीक हो जाएगा। बस जब वो बोलती थी तभी सब कुछ ठीक हो जाता था, और फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान बन गया, और फिर हमीदा चली गई। लेकिन आज भी उसकी याद जो है वो मेरे सीने में प्यारी सी चुभन दे जाती है, और मैं उसे कभी भी नहीं भुला पाऊंगा, ये तो पक्की बात है। जी हाँ, और ये धर्म जी की यानी कि ही मैन ऑफ बॉलीवुड की पहले प्यार की कहानी थी। आप मुझे बताइए, आपको पहली बार प्यार कब हुआ था? जी हाँ, इसी के साथ एक और खूबसूरत सा गाना आप सबके लिए मेरी तरफ से।

जी हाँ दोस्तों, और इसी के साथ हम आपसे विदा लेने का वक्त हो गया है। जी हाँ दोस्तों, जाने का वक्त हो गया है। आई होप आपने आज का हमारा ये प्रोग्राम एंजॉय किया हो। आई नो बीच में थोड़ी तकनीकी खराबी की वजह से रुकावटें आ रही थी, पर उन रुकावटों को पार करके हम आपसे मिलने में कामयाब हो गए किसी हद तक, एंड दैट्स वॉट इज इम्पॉर्टेंट। जी हाँ, वही इम्पॉर्टेंट है। दैट्स अबाउट इट। अब मिलेंगे आपसे कल यानी कि ट्यूजडे को। तब तक के लिए आपको क्या करना है, वेल मजे करने हैं, फन करना है, और जो भी अच्छा लगता है वो करना है। बस किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, काइंड बनना है, हेल्दी रहना है, हैप्पी रहना है, मुस्कुराते रहना है, गाते रहना है, खाते रहना है, और सुनते रहना है रेडियो ब्रिस्वानी को। एंड ये लास्ट सॉन्ग आप सबके लिए मेरी तरफ से।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

आपकी शादी होने वाली है तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज ranicreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी, सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM। मैं हूं निव्या शर्मा और स्वागत है आपका आज के न्यूज बुलेटिन। सबसे पहले शुरुआत हमेशा की तरह ब्रिस्बेन की कुछ खास खबरों के साथ। एका मेले की 150वीं वर्षगांठ का जश्न। जी हां, ब्रिस्बेन शोग्राउंड्स में क्वींसलैंड के सबसे बड़े सालाना मेले एका का आगाज हो चुका है। इस साल ये ऐतिहासिक मेला अपनी 150वीं वर्षगांठ मना रहा है, जिसमें मशहूर स्ट्रॉबेरी संडे और शानदार आतिशबाजी मुख्य आकर्षण है। इसी के साथ रेडलैंड्स में एका पब्लिक हॉलीडे। ग्रेटर ब्रिस्बेन के रेडलैंड समेत कई इलाकों में आज 10 अगस्त को स्थानीय एका हॉलीडे मनाया जा रहा है। इसकी वजह से काउंसिल दफ्तर और लाइब्रेरी बंद है, हालांकि कचरा कलेक्शन सेवाएं सामान्य रूप से चालू रही। वहीं 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक के लिए $9 मिलियन का फंड। जी हाँ, यानी कि $9 मिलियन का फंड। क्वींसलैंड सरकार ने 2032 ब्रिस्बेन ओलंपिक की तैयारी के तहत सनशाइन कोस्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए $9 मिलियन के नए फंड का ऐलान किया है। वहीं मेले के बच्चों के लिए चलता फिरता स्कूल। जी हां, एका मेले के दौरान शो में काम करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए रेडक्लिफ शो ग्राउंड्स में एक खास ट्रेलरों वाला मूवेबल क्लासरूम बनाया गया है, ताकि बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो। इसी के साथ ब्रिस्बेन सिटी कैट फेरी सेवाएं प्रभावित। ब्रिस्बेन शहर में चल रही इंडस्ट्रियल स्ट्राइक और सर्विस मेंटेनेंस की वजह से सिटी कैट और फेरी सेवाओं के टाइम टेबल में कुछ बदलाव किए गए हैं। वहीं झाड़ियों में कंट्रोल्ड बर्निंग। जी हां, ब्रिस्बेन शहर की सुरक्षा और आने वाले मौसम को देखते हुए कोआला बुशलैंड्स और आसपास के जंगलों में काउंसिल द्वारा नियंत्रित तरीके से सूखी पत्तियों को जलाने का काम पूरा किया जा रहा है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं सीधा भारत की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ। सबसे पहले दिल्ली विधानसभा में हंगामा। दिल्ली विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान आज काफी हंगामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी के 6 विधायकों को साइकिल घोटालों के विरोध में नारे लगाने और आपत्तिजनक टी शर्ट पहनने की वजह से मार्शल के जरिए सदन से बाहर किया गया। वहीं झारखंड में छात्रों की जीत, 3 परीक्षाएं रद्द। रांची में पिछले 16 दिनों में चल रहा छात्रों का बड़ा प्रदर्शन आखिरकार रंग लाया। झारखंड सरकार ने छात्रों की मांग मानते हुए जेपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा समेत 3 बड़ी परीक्षाएं रद्द कर दी हैं। वहीं यूपीआई ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा कोई चार्ज। जी हां, सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए वित्त मंत्रालय ने साफ किया है कि आम नागरिकों के लिए यूपीआई से डिजिटल पेमेंट पूरी तरह फ्री रहेगा और इस पर कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होगा। वहीं अमरनाथ यात्रा पर अस्थायी रोक। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही भारी बारिश और खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के लिहाज से अमरनाथ यात्रा को बालटाल और पहलगाम दोनों रास्तों पर फिलहाल रोक दिया है। वहीं ग्रामीण रोजगार योजना के नए आंकड़े। सरकार की नई ग्रामीण रोजगार योजना VBGRAMG के पहले महीने के आंकड़े आए हैं, जिसमें जुलाई महीने में 7.67 करोड़ मानव दिवस काम दर्ज किया गया है। इसी के साथ आरजी कर मामले में नई जांच के निर्देश। पश्चिम बंगाल में चर्चित आरजी कर मेडिकल कॉलेज मामले की संस्थागत जवाबदेही तय करने के लिए राज्य सरकार और जांच एजेंसियों ने नए सिरे से कार्रवाई और समीक्षा शुरू कर दी है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की तरफ। सबसे पहले गाजा शांति प्रस्ताव पर मतभेद। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका समर्थित 15 सूत्रीय गाजा शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि जब तक हमास पूरी तरह हथियार नहीं डालता, तब तक इजरायली सेना पीछे नहीं हटेगी। वहीं ईरान में नया सुरक्षा प्रमुख नियुक्त। ईरान में राजनीतिक हलचल तेज है। मोहसिन रजाई को देश की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का नया प्रमुख बनाया गया है। वहीं कनाडा और यूरोप में जंगलों की आग। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया और पश्चिम यूरोप में भीषण गर्मी के बीच जंगलों की आग फैल गई है, जिसकी वजह से हजारों लोगों को सुरक्षित इलाकों में शिफ्ट किया गया है। वहीं चीन में डॉल्फिन तूफान का अलर्ट। चीन के पूर्वी तटीय इलाकों में शक्तिशाली समुद्री तूफान डॉल्फिन की दस्तक के बाद बड़े पैमाने पर लोगों को तटीय क्षेत्रों से हटाकर सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। इसी के साथ अमेरिकी रक्षा हथियारों का स्टॉक कम। पेंटागन ने अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनियों को तेजी से उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है, क्योंकि चल रहे वैश्विक तनाव और संघर्षों के कारण अमेरिकी सैन्य हथियारों का स्टॉक तेजी से कम हो रहा है। वहीं रूस और उत्तर कोरिया के बीच सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर कोरिया रूस को सैन्य अभियानों में मदद के लिए अपने सैनिक और सुरक्षा कर्मी भेजने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ अब जरा चलते हैं खेल समाचारों की तरफ। सबसे पहले अस्मिता चालिया ने रचा इतिहास। बैडमिंटन में भारत की अस्मिता चालिया ने कोरिया मास्टर्स 2026 का खिताब जीत लिया है। वहीं वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 में भारत को मेडल। अमेरिका में चल रही वर्ल्ड एथलेटिक्स अंडर 20 चैंपियनशिप में भारत के बसंत कुमार मेघवाल ने हाई जंप में सिल्वर और शाहनवाज खान ने लॉन्ग जंप में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। वहीं एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग में सिल्वर। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में चल रही एशियन जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत के महाराजन अरुमुंगा पंडियन ने 65 किलोग्राम वर्ग में 285 किलो वजन उठाकर सिल्वर मेडल जीता। वहीं भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज में सरफराज की वापसी। 15 अगस्त से शुरू हो रही भारत श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए चोटिल साई सुदर्शन की जगह सरफराज खान को भारतीय टीम में शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ वेस्टइंडीज वर्ल्ड कप क्वालिफायर में पहुंची। अफगानिस्तान की आयरलैंड पर 92 रनों की जीत के बाद वेस्टइंडीज की टीम लगातार तीसरी बार 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए सीधे क्वालिफाई करने से चूक गई और अब उन्हें क्वालिफायर खेलने होंगे। वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग का प्री सीजन खत्म। यूरोपियन फुटबॉल में प्रीमियर लीग के नए सीजन की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सभी प्रमुख क्लबों में ने अपनी प्री सीजन टूर खत्म करके नई रणनीतियों के साथ मैदान में उतरने की घोषणा की है। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अब आपसे कल। तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।
1: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
2: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। I actually want an experienced lawyer to handle my case.
1: Go for the best vire. Atul Bhardwaj ji nu ajji contact karo. Ona de kol vast experience a. Te law di intricacies nu handle karan ch vi o expert han. Criminal law, domestic violence, traffic drug offense vich 12 saal to vadh da rich experience. Te conveyance, family law, immigration laws vich vi Bhardwaj and associates de lawyers da vast experience a. And the best point, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
2: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
1: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.
3: Satsri Kaal, Madam, Namaskar, Dosto, Maina, Thoda, Prathat, Pajit. Ek bar phir, Satrangi Ping Australia Tour 2026 leke assi tuhade kol aa rahe hain.
4: The legend Harbhajan Mann live in Brisbane
5: Saturday 15th August 6:30 PM.
3: Milde hai ji Brisbane vich
5: at Brisbane Central Auditorium Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
6: Fire ants tuhade ilake vich maujood han. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਏ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਲਈ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 50 ਸੈਂਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਡਾਕਟਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਅਤੇ ਰਾਇਲ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵਰਗੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। 1600 ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨੀ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਖੇਡ ਕਲੱਬਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ 2032 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖੇਡ ਇਮਾਰਤ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕਵੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਐਥਲੀਟ ਵਿਲੇਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਕੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ। ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਫਾਰ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਚ ਕਰੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਿਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
7: Are you ready to stop renting and thinking about owning one? Or maybe an investor looking to invest? Then think no more and it is time to build your future in upcoming house and land packages available in Oxlade, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland. It is the great Australian dream. Homes built strong, smart and built to last. If you are ready to make the move, then don't wait till tomorrow. Call agent John Lawla on 0404-004-899. Yes, it's 0404-004-899 and quote code word Briswani. Your new home waiting for you in Oxley, Breckenridge, Moggill and surrounding areas in Brisbane, Queensland.

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: क्या बात है जुबिन, बैक टू बैक सुपर हिट्स, पर लड़की किसी में नहीं मिलती है। ये हाल सिर्फ वीडियो में ही है या रियल लाइफ में भी?
1: ये दिल ऐसी गलती नहीं करता।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane
7: से. To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. I actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनियर, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicellpacific.com.

0: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies, and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare, and transport. When you take part, you help make sure your language, culture, and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
1: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो ओमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे ओमसॉक एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाले शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich ag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di ag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार लई लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजां नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुशफायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: सत श्री अकाल मदाब नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रथम पजे एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: Milte hain ji, Brisbane beach.
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.
5: Priya, next month mama ka birthday hai. सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दूँ, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
6: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
5: अच्छा, वो क्या?
6: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
5: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
6: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

हेलो वेलकम आदाब जी, सत श्रीकाल जी। तुसी बने हो जी थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवानी 101.0 FM ते जी आर चे संदेश अलग दिनाल से बन चुके हो। ढेर सारिया गल्लां करन दा साडा बहुत ही सोहना जिहा वेला शुरू हो चुका है जी, ते इन्हां गल्लां करनियां ने इस वेले दे दौरान असी ढेर सारिया थोड़े नाल थोड़ियां मेरिया अपनियां सब दियां कुछ यादां तां असीं कर लवांगे, कुछ किसे दियां गल्लां कर लवांगे, कुछ गीत ज्यादा सुनांगे। फिलहाल थोड़ी पसंद है, मेरी पसंद है, सब दी पसंद है, रले मिले नवे पुराने ते सब कुछ होगा। बस थोड़े सुनेहियां दा तां इंतजार है, तो फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। रेडियो बिरसोनी 101.0 FM साडे फेसबुक पेज है जी, bisoni@bisoni.com साडी ईमेल आईडी है, जरिया जिहड़ा भी तुहानूं चंगा लगता है वो अपनाओ, पर साडे नाल गल्लबात जरूर करो। फटाफट दे नाल जुड़ना शुरू कर दो। मैं हुण वापस आउंदी हां।

0: बिजली का बिल देखकर हर महीने शॉक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।
1: क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270035 पर, या फिर उनसे मिलिए Level 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स, एंगेजमेंट्स, रिन्यूअल ऑफ वाउस और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर, हॉल या पार्क में, बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270035। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270035, या फिर ईमेल करें permanand@optusnet.com.au पर। For best service, complete legal paperwork, merit certificate and a memorable merit ceremony, remember the name Parmanand, your professional and friendly civil merit celebrant since 2003.

0: It's not just a movement. It's a mentality. It's a lifestyle. It's Ninja Nation.
1: बैक जी, वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहते रेडियो स्टेशन रेडियो संदेश अलग दिनाल बने हुए हो। देखो, सब तो पहला गल करते हैं फिल्म के बजट की। देखो, किसी मूवी का बजट उसके हिट या फ्लॉप होने के पैमाने का सब तो वड्डा फैक्टर होंदा। फिल्म की कैटेगरी तय करन तो पहला कुछ चीजा समझना जरूरी होंदिया ने, जिवें लैंडिंग कास्ट, इस विच प्रोडक्शन दे खर्चे शामिल होंदे ने, जिवें एक्टर्स दी फीस, क्रू, सैट दे खर्च वगैरह वगैरह वगैरह। दूसरा, प्रिंट ते विज्ञापन यानी एडवरटाइजमेंट, ते इस विच ओ खर्च आउंदा है जो किसी मूवी दी मार्केटिंग ते प्रमोशन विच खर्च होंदा होंदा है। हुण इस तों बाद जानना तुसीं इह हैगा कि किवें तय होंदा है हिट या फ्लॉप, इही दसदे आं। पर पहले गीत सुणो।

0: फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल डीवीडी, सीडीज, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशंस विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज rani-creations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।
1: आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है, मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करे प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660।
2: क्रेन रेडी हो गया? नहीं,
3: एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर, एक प्रॉब्लम हो गई।
4: क्या?
3: मॉडल नहीं आ रही।
4: क्यों
3: सर? आपके मोबाइल पर उनका फोन आया था कि वो नहीं आएगी।
4: ला फोन दे।

0: ਸ਼ਾਹ।
1: हाँ जी जी अनु जी वेलकम बैक। एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे ते रेडियो स्टेशन रेडियो दसवाने वन सन वन एम ते जी आर चे संदेश अलग दे नाल तुसीं बने होए हो। हुण जिवें तुहानूं पहलां दस्सिया सी ना कि किवें तो तय हुंदा है कि फिल्म हिट हैगी है या फ्लॉप, यही तो जानना सब तो ज़्यादा जरूरी है। तो डिजास्टर तो शुरुआत कर लीए चलो डिजास्टर तो करते हैं। तो देखो डिजास्टर फिल्म कि होंगी है, तो जी फिल्म अपनी लागत का 50% भी नहीं कमा पाती ना, 50% भी हाफ भी कमाई नहीं कर पाती, यानी कि फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ के बनी है 50 लाख भी ना कमाई कर सके तो वह डिजास्टर होंगी है। फ्लॉप फिल्म अपने बजट तो घट कमाई करती है कि वह फ्लॉप होंगी है। तो एवरेज फिल्म कि होंगी है, एवरेज होंगी है फिल्म अपनी लागत क्ड लेंदी हैगी मामूली मुनाफा कमाती हैगी, यानी कि 1 करोड़ के बनी हैगी 1.5 करोड़ या 1.25 करोड़ उसने कमाई कर ली है ना। हिट अपनी लागत तो घट 50% तो ज़्यादा का मुनाफा, जिवें 1 करोड़ के बनी है तो 1.5 करोड़ तो उपर की जो कमाई कर ले तो वह हिट होंगी है। तो सुपर हिट ये फिल्म अपनी लागत तो दुगनी कमाई करती है तो वह सुपर हिट होंगी है। तो ब्लॉकबस्टर ब्लॉकबस्टर फिल्म फिल्म अपनी लागत तो 3 गुणा या उस तो भी ज़्यादा की कमाई कर ले ब्लॉकबस्टर हो जाती है। तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म वो ये होंगी है, फिल्म पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ दे लागत तो 4-5 गुणा की ज़्यादा कमाई करे।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and TNCs apply.
1: Queensland vich har saal jangla vich aag lagdi hai. Eh tuhade parivar ate ghar nu taiyar karan da sama hai. Jangal di aag to bachav di yojana banao ta je har koi jaan sake ki ki karna hai. अपने परिवार ले लोड़ींदियां सारी जरूरी चीजा नाल कर छड़ के जान वाली किट बनाओ। अग दे खतरे दे दर्जियां दी जांच करो अते जंगल दी अग दियां चेतावनियां नू सुनो। होर जानो बुश फायर सर्वाइवर प्लान दी पाल करो। क्वींसलैंड सरकार ब्रिस्बेन द्वारा अधिकारित।
2: सत श्री अकाल मदाम नमस्कार दोस्तों, मैं हां तुहाडा प्रथक भजन। एक बार फिर सतरंगी पिंग ऑस्ट्रेलिया टूर 2026 लेके असीं तुहाडे कोल आ रहे हैं।
3: The legend, Harbhajan Mann, live in Brisbane,
4: Saturday 15th August, 6:30 PM.
2: Milde hai ji Brisbane vich.
4: At Brisbane Central Auditorium, Mount Cravat. Tickets at Premier Tickets.

हां जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाणी 101.1 FM ते जी आरजे संदेश चौलक दे नाल तुसी बने हुए हो। हां जी, तो देखो हुण असली कमाई दा सच जानते हैं ता लोग अक्सर लोग समझते हैगे ने कि जेकर फिल्म ने 100 करोड़ कमाए हैगे ने ते बजट 80 करोड़ दा हैगा तां फिल्म हिट है। ये पूरी सच्चाई नहीं है। फिल्म की कुल कमाई का एक वड्डा हिस्सा टैक्स ते सिनेमा घर मालिकां दे कोल जांदा हैगा। निर्माता ते डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूटर दे हाथ विच जो पैसा आउंदा है उसनू डिस्ट्रीब्यूटर शेयर करते हैगे। फिल्म तद हिट मनी जांदी है जद डिस्ट्रीब्यूटर का शेयर उसकी फिल्म खरीदने की कीमत तो ज्यादा होवे।

हाँ जी, एक बार फिर तो बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा थोड़े अपने चाहे रेडियो स्टेशन रेडियो बसवाने वन सर वन एम ते जी आज संदेश अलग दिन से बने हुए हो। हूँ जी मैं वर्ड की गल कर रही हूँ, शायद कई ने पहली बार सुनिया होना है, तो उस वर्ड का नाम है जी स्लीपर हिट। स्लीपर हिट की हुंदा है? स्लीपर हिट तो सिंपल भाषा में समझिया जाए तो स्लीपर हिट वो फिल्म हुंदी है जो बिना किसी वड्डे शोर शराबे भारी भरकम प्रमोशन या सुपरस्टार दे रिलीज़ हुंदी है। शुरुआत में इसकी कमाई बहुत घट, पर हौली हौली वर्ड ऑफ माउथ के दम से यह फिल्म रफ्तार फड़ती है तो फाइनली बॉक्स ऑफिस से ब्लॉकबस्टर साबित हुंदी है। जिवें सैयारा, कांतारा, 12वीं फेल, द कश्मीर फाइल्स वगैरह। स्लीपर हिट विच कॉन्टेंट ही किंग हुंदा है।

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता। कल को इमरजेंसी हो जाए तो?
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली? मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड?
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए? ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in। व्हाट्सएप या कॉल कीजिए इंडिया नंबर 844-838-1360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज, कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने, समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो, जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शो ग्राउंड्स, ऑफिस 5-1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

करना आसान हो। दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो, जीना आसान हो।

जान पहचान हो जीना आसान हो, जान पहचान हो जीना आसान हो, दिल को चुराने वालों आंख न चुराओ, नाम तो बताओ, जान पहचान हो जीना आसान।

बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। Just send $30 top up or $300 money transfer to your family and friends in Fiji and be in the draw. Aur jankari ke liye visit kare digicelpacific.com.

मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।

0: ऐ मेरी हमरक्स, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: भाई मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
1: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
0: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
1: अरे उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
0: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
1: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
0: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
1: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।

0: हनी, ये तुम कहाँ ले जा रही हो? ये ग्रोसरी पास वाली शॉप से ले सकते हैं ना?
1: यस बेबी, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद क्वालिटी एंड हेल्थ। हम जाएंगे सिर्फ MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड।
0: ऐसा क्या खास है वहाँ?
1: सब कुछ, क्वालिटी स्पाइसेस, लेंटिल्स, राइस, फ्लावर और फ्रोजन सब्जी फ्रॉम फिजी एंड इंडिया। ब्रिस्बेन के बेस्ट इंडियन बुचर सप्लाइंग फार्म फ्रेश गोट, लैम, चिकन एंड डक और फ्रेश लोकल प्रोड्यूस भी रखते हैं। साथ ही किचनवेयर एंड डिस्पोजेबल प्लेट्स की लार्ज रेंज किसी भी फंक्शन के लिए।
0: अरे वाह, इंटेलिजेंट हो गई हो।
1: MC's इंडियन एंड आइलैंड फूड, सर्विंग ब्रिस्बेन सिंस 1999, ओपन 7 डेज। फाइंड अस ऑन फेसबुक और विजिट वेबसाइट mcsfoods.com.au। 1/268 किंगस्टन रोड, स्लैक्स क्रीक, फोन नंबर 3804-3818। दैट्स 3804-3818।

0: प्रिया, नेक्स्ट मंथ मामा का बर्थडे है। सोच रही हूँ उनको फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू न्यूजीलैंड मनी भेज दो, जिससे वो अपनी पसंद का गिफ्ट ले लेंगे।
1: ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मेरे पास एक अच्छा ऑप्शन भी है मनी ट्रांसफर करने का।
0: अच्छा, वो क्या?
1: अब तुम घर बैठे न्यूजीलैंड या फिजी में भी मनी भेज सकती हो लोटस फॉरेन एक्सचेंज की हेल्प से ऑनलाइन, और वो भी फ्री में।
0: लेकिन मामा के लिए मनी लेने कहीं दूर जाना पॉसिबल नहीं होगा।
1: अरे, रिसीवर्स अब कैश पिकअप, बैंक ट्रांसफर या मोबाइल वॉलेट में भी ले सकते हैं मनी। डाउनलोड कीजिए लोटस फॉरेन एक्सचेंज ऑनलाइन au.lotusfx.com ऐप आज ही विजिट करें।

0: For more entertainment, log on and subscribe to www.youtube.com/venus.
1: बिजली का बिल देखकर हर महीने शौक लगता है क्या? तो अब स्विच करो सोलर पर। प्रे सोलर पावर के साथ आपके लोकल CEC अप्रूव्ड सोलर एक्सपर्ट्स। घर हो या बिजनेस, हम सब के लिए सोलर पैनल्स, बैटरीज और कमर्शियल सिस्टम्स को सप्लाई और इंस्टॉल करते हैं, ताकि आप बचा सके पैसे और क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी से एनवायरमेंट को भी। आपकी लोकल टीम पर भरोसा रखे। प्रे सोलर पावर का प्रॉमिस है क्वालिटी प्रोडक्ट्स, प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन और रियल सेविंग्स। तो अब बिजली का बिल नहीं, सिर्फ सनशाइन मिलेगा। रे सोलर पावर, पावरिंग होम्स, पावरिंग बिजनेसेस, पावरिंग द फ्यूचर। आज ही कॉल करें 0430-525-896, दैट इज 0430-525-896। हमारा ईमेल आईडी है ray@raysolarpower.com.au और वेबसाइट www.raysolarpower.com.au।

क्या आपकी शादी होने वाली है? तो आज ही फोन कीजिए कॉमनवेल्थ सिविल मैरिज सेलिब्रेंट परमानंद को 04111270355 पर या फिर उनसे मिलिए लेवल 133 बालाक्लावा स्ट्रीट वोलोंगाबा में। फॉर वेडिंग्स एंगेजमेंट्स रिन्यूअल ऑफ वाउज और कमिटमेंट सेरेमनीज घर पर हॉल या पार्क में बुक विद परमानंद। कॉल नाउ ऑन 04111270355। रिमेम्बर द नंबर इज 04111270355 या फिर ईमेल करे permanand@optusnet.com.au पर। फॉर बेस्ट सर्विस कंप्लीट लीगल पेपर वर्क मैरिज सर्टिफिकेट एंड अ मेमोरेबल मैरिज सेरेमनी रिमेम्बर द नेम परमानंद योर प्रोफेशनल एंड फ्रेंडली सिविल मैरिज सेलिब्रेंट सिंस 2003।

फैशन का जब भी जिक्र होता है तो लोग रानी क्रिएशंस को याद करते हैं, क्योंकि रानी क्रिएशन में सभी कुछ उपलब्ध है। यू गेट मेंस एंड लेडीज वेडिंग सूट्स एंड एक्सेसरीज, टॉप क्वालिटी डिजाइनर साड़ीज, लहंगा, सलवार कमीज, पार्टी वेयर एंड मेन शर्ट्स एंड सूट्स। यू कैन ऑल्सो ऑर्डर टेलर मेड सूट्स फ्रॉम रानी क्रिएशंस। इतना ही नहीं, ओरिजिनल DVDs, CDs, फोन कार्ड्स, प्रीपेड चार्ज कार्ड्स, फैंसी ज्वेलरी, बैंगल्स, गिफ्ट वेयर भी उपलब्ध है। फॉर टॉप क्वालिटी बॉलीवुड फैशन विजिट रानी क्रिएशंस एट 33 बलक्लावा स्ट्रीट, वुलन गैबा, ओपन डेली फ्रॉम 9 AM। टेलीफोन रानी क्रिएशंस ऑन 3391-0622 और विजिट देयर वेब पेज RaniCreations.com। द वन स्टॉप बॉलीवुड फैशन एंड एंटरटेनमेंट स्टोर, वेल नोन फॉर इट्स क्वालिटी सर्विस एंड रीजनेबल प्राइसेस।

आप माने या ना माने, बात बिल्कुल सही है। मौत और टैक्स से कोई नहीं बच सकता, लेकिन आपका हुनरदार अकाउंटेंट आपको कम टैक्स भी भरवा सकता है और अधिक टैक्स वापस लौटा भी सकता है। स्मॉल और मीडियम बिजनेस टैक्स अकाउंटिंग, ऑल इनकम टैक्स बेस आदि विषयों में वर्षों के अनुभवी बिजनेस अकाउंटेंट प्रकाश मेनन का जवाब नहीं। प्रॉम्प्ट पर्सनलाइज्ड एंड प्रोफेशनल सर्विस के लिए ऑब्लिगेशन फ्री अपॉइंटमेंट फ्री ऑफ चार्ज रिंग करें प्रकाश मेनन को। फोन 3630-5438 या मोबाइल 0415-952-660 0415-952-660

0: ओए राहुल, विरे तेरे केस दा की होया?
1: ओ यारा, मैं बहुत वरीड हां। आई एक्चुअली वांट एन एक्सपीरियंस्ड लॉयर टू हैंडल माय केस।
0: गो फॉर द बेस्ट विरे। अतुल भारद्वाज जी नु अज ही कांटेक्ट करो। ओना दे कोल वास्ट एक्सपीरियंस आ ते लॉ दी इंट्रीकेसीज नु हैंडल करन च भी ओ एक्सपर्ट हन। क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक वायलेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस विच 12 साल तो वध दा रिच एक्सपीरियंस ते कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमीग्रेशन लॉज विच भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स दे लॉयर्स दा वास्ट एक्सपीरियंस आ। एंड द बेस्ट पॉइंट, they understand the stress that you go through and work effectively to minimize it.
1: Thanks a ton, Vire. I'm so relaxed to hear that.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Ajji contact karo Atul Jino on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: ऐ मेरी हमरंग, मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: यार साग में कुछ दम नहीं है, बिल्कुल मजा नहीं आया।
1: किसी दिन घर आना, असली देसी घी में साग बनाकर खिलाऊंगा तुम्हें।
0: कहाँ यार, आजकल असली देसी घी मिलते कहाँ है?
1: किस दुनिया में हो भाई, क्वालिटी फूड सर्विस में ट्रिपल रिफाइंड प्योर देसी घी मिलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ही बनते हैं 100% प्योर क्रीम से, 99.9% प्योर मिल्क फैट से, और तो और हर मौसम में उपलब्ध रहने के साथ साथ हाई क्वालिटी पैकेजिंग में भी आते हैं।
0: मुझे तो पता ही नहीं था। अच्छा ये बताओ मैं कहाँ से खरीद सकता हूँ?
1: लगभग सभी इंडियन आउटलेट से तुम पीवा देसी घी ले सकते हो।
2: पीवा देसी घी सिंह डेयरी द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, बिल्कुल ओरिजिनल और कलरलेस। और इन्फो के लिए आज ही कॉल करें मोबाइल नंबर 0400664435 पर, याद रहे 0400664435 पर, या फिर ईमेल करें singdairy@gmail.com पर।
3: मेरी पत्नी सभी घी ट्राई कर चुकी है और जब से वो पीवा देसी घी इस्तेमाल करने लगी है सारे घर में घी की खुशबू फैल जाती है।

0: Hi, this is Amitabh Bachchan.
1: और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
2: Hi guys, I'm Manmeet, one of the Meet Brothers. आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
3: Hi, this is Salman Khan. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
4: Hi, this is Deepika Padukone. और आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिसवानी.
5: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Alia.
6: Hi, मैं हूँ तुलसी कुमार और आप मुझे सुन रहे हैं Radio Brisbane से.
7: To everyone tuning into Radio Brisbane, this is Shahrukh Khan.
8: Hi, this is Ajay Devgan
9: और आप सुन रहे हैं Radio Brisbane.

0: यार राहुल, तेरे केस का क्या हुआ?
1: यार I'm so worried. Actually want an experienced lawyer to handle my case.
0: मेरी एडवाइस है, go for the best. अतुल भारद्वाज जी है ना, उनके पास 12 साल से ज्यादा का वास्ट एक्सपीरियंस है और लॉ की एंट्री केसेस को हैंडल करने में उनकी एक्सपर्टीज है. क्रिमिनल लॉ, डोमेस्टिक ऑफेंस, ट्रैफिक ड्रग ऑफेंस में 12 साल से ज्यादा का रिच एक्सपीरियंस, और तो और कन्वेयंस, फैमिली लॉ, इमिग्रेशन लॉज में भी भारद्वाज एंड एसोसिएट्स के लॉयर्स का वास्ट एक्सपीरियंस है. एंड द बेस्ट पॉइंट, दे अंडरस्टैंड द स्ट्रेस दैट यू गो थ्रू एंड वर्क इफेक्टिवली टू मिनिमाइज इट.
1: थैंक्स अटनिया, आई एम सो रिलैक्स्ड टू हियर दैट.
0: Don't risk your life. Talk to Atul before you talk to police. Contact Atul now on 0400-234-235. That is 0400-234-235.

0: यार सब ठीक है, बस मम्मी पापा इंडिया में अकेला फील करते हैं। अनऑर्गेनाइज्ड हेल्पर्स पे भरोसा भी नहीं होता, कल को इमरजेंसी हो जाए तो।
1: तूने ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग के बारे में सुना है? गुरुग्राम में है प्रोफेशनल सीनियर लिविंग, 24/7 नर्सिंग और डॉक्टर्स के स्ट्रॉन्ग टाई-अप्स के साथ। फोर्टिस, मेडांटा, सीके बिरला, आर्टेमिस, सब अच्छे हॉस्पिटल्स पास ही हैं।
0: सीरियसली, मतलब प्रॉपर केयर और मुझे यहाँ भी पीस ऑफ माइंड।
1: बिल्कुल, ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, ऑस्ट्रेलियन ओन्ड सीनियर लिविंग इन गुरुग्राम इंडिया। ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड्स की प्रोफेशनलिज्म, एक्सपीरियंस टीम और ट्रस्टेड अल्टरनेटिव टू अनऑर्गेनाइज्ड अनरिलायबल होम हेल्पर्स। अपने पेरेंट्स के लिए सेफ डिग्निफाइड केयर चाहिए, ओम्स ऑर्ग, स्पेल्ड OMSORG। वेबसाइट omsorg.co.in, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, इंडिया नंबर 8448381360। ओम्स ऑर्ग असिस्टेड लिविंग, जहां केयर का मतलब है रियल केयर।

0: अनुज कोई अच्छा सा लॉयर सजेस्ट करो ना, ऐसा जो मेरी सारी बात ढंग से सुने समझे और फिर मेरे तरीके से मुझे समझाए।
1: अर्शाद लॉयर्स है तुम्हारी प्रॉब्लम का सलूशन। कमर्शियल मैटर हो जैसे लीज का मामला, बिजनेस हो या फिर घरों की बाइंग सेलिंग का मामला, और डिवोर्स जैसे फैमिली मैटर्स भी, वो सब में मदद कर सकती हैं। और फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अदालत तक तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। अभी फोन करो 0420-933-171 पर और 15 मिनट का फ्री फोन कंसल्टेशन ले लो।
0: अरे वाह, इनका पता बताना।
1: अर्शाद लॉयर्स, माउंट ग्रेविट शोग्राउंड्स, ऑफिस 5, 1644 लोगन रोड, माउंट ग्रेविट, एम्पल पार्किंग। कॉल अर्शाद फ्रॉम अर्शाद लॉयर्स नाउ ऑन 0420-933-171। वेबसाइट www.arshadlawyers.com। We pride ourselves in providing excellent service.

जीवन अनमोल है, ये जीवन इसका कोई मोल नहीं है, आप कितने ही रुपए खर्च कर लें। कहते हैं जिसे इस दुनिया से जाना है ना, उसे आप बचा नहीं सकते। और यकीन मानिए, जो इस दुनिया से जा रहा है, अगर आप उसका सारा धन वैभव भी ले लें तो वो खुशी खुशी दे देगा अपने इस जीवन के लिए। लेकिन जीवन रहते हम इस जीवन को ना तो जान पाते हैं, ना समझ पाते हैं और ना ही पहचान पाते हैं। आइए आज वक्त रहते अपने जीवन को जानने की एक और कोशिश करते हैं रेडियो प्रसवानी 1701 AM पर हमारे खास सफर जीवन आधार में। आइए इस अगले गीत के साथ बढ़ते हैं आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी और रहिए सताक्षी के साथ।

0: चिंता।
1: आपने भी ये जरूर सुना होगा श्रोताओं कि चिंता चिता के समान होती है, और आज के दौर में हमारा जो सबसे बड़ा दुश्मन है चिंता, वो हम सबको घेरे हुए है। मैं हूँ, आप हैं, हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी चिंता में डूबे रहते हैं। और चिंता कोई एक नहीं होती, चिंता के अनेक रूप हैं। आज इसकी चिंता तो कल उसकी चिंता, या फिर ये कहें एक ही वक्त में न जाने कितनी चिंताएं हम करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि ये चिंता ही है जो आपको चिता तक ले जाती है। जिसको एक बार चिंता हो गई ना, वो डॉक्टर के चक्कर लगा लगा कर परेशान हो जाता है, लेकिन उसका रोग खत्म नहीं होता, बल्कि एक रोग से अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। आप अगर पढ़ने और जानने बैठेंगे, आप समझने बैठेंगे, तो ज्यादातर बीमारियां आज के समय में जो हो रही हैं, वो इसी चिंता के कारण ही हैं। तभी तो कबीरदास जी ने कहा है, चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य विचारा क्या करे कहां तक दवा लगाए। सुनते रहिए रेडियो प्रिस्वानी 1701 AM, और रहिए सताक्षी के साथ।

जीवन को जानने, समझने और खूबसूरत बनाने का ये जो सफर है जीवन आधार, इस वक्त आप सुन रहे हैं रेडियो प्रस्वानी 1701 AM पर। आपके साथ है सताक्षी। चलिए अपने जीवन को एक नया आधार देते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

ऐसा कोई न मिला हमको, हमको दे उपदेश। ऐसा कोई न मिला हमको, हमको दे उपदेश। भव सागर में डूबता कर गई काढ़ कैस। रेडियो ब्रह्मवाणी 1701 AM पर जीवन आधार आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ। और कबीरदास जी कहते हैं श्रोताओं कि हम संसारी जन जो है वो इस बात को लेकर परेशान होते हैं, दुखी होते हैं कि हमको कोई पथ प्रदर्शक नहीं मिला, हमको कोई राह दिखाने वाला नहीं मिला, रास्ता बताने वाला नहीं मिला जो उपदेश देता। और हम जो भव सागर में डूब रहे हैं, जो बिना ज्ञान के हम गोते लगा रहे हैं, हम इस संसार में चक्कर लगा रहे हैं, कोई होता जो हमको पकड़कर निकाल लेता, है ना। अक्सर जब आप फेलियर्स का सामना करते हैं तो ये लगता है कि यार कोई होता जो हमें सही राह दिखा पाता, जो हमें सही और गलत का भेद बता पाता, तो शायद हमारी जिंदगी में फेलियर्स आते ही नहीं। लेकिन एक बात तो ये भी है ना कि जब तक आप जिंदगी का एक्सपीरियंस नहीं लेंगे, कोई आपको कितना भी संभाल ले, आप गलत करने से बच नहीं पाएंगे। जिंदगी के एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको सही रास्ते पर लाते हैं और सही और गलत की पहचान कराते हैं। और ऐसे ही एक्सपीरियंस के नाम ये अगला गीत है। सुनते रहिए सताक्षी के साथ रेडियो ब्रह्मवाणी पर जीवन आधार।

के आधार में रचा बचा ये साथ है हमारा, ये साथ है जीवन के आधार से जुड़ा जीवन आधार। जी हाँ, जिंदगी आसान तो है, लेकिन ये जिंदगी तब आसान लगती है जब इस जिंदगी को हम जान पाते हैं, समझ पाते हैं, वरना ये जिंदगी हर रोज एक नई मुश्किल से भरती चली जाती है। आइए अपनी जिंदगी को और करीब से जानते हैं इस अगले गीत के साथ। सुनते रहिए जीवन आधार सताक्षी के साथ।

मनुष्य की एक बहुत ही बुरी आदत है कि उसमें बहुत जल्द गर्व आ जाता है। गर्व आ जाता है इस बात का कि आज उसके पास नेम है, फेम है, घर है, गाड़ी है। इस बात की जो एक एक एक ईगो है वो उसमें आ जाती है। अपनी शक्ति, अपनी संपत्ति को देखकर कभी घमंडी मत बनिए, क्योंकि जब इस शरीर से आत्मा निकल जाती है तो सबसे शक्तिशाली मनुष्य की जो देह है ना दोस्तों, वो भी धरती में डल जाती है और उसके ऊपर भी घास उगाती है। इसलिए किस बात का घमंड, ये जब शरीर ही आपका नहीं है तो धन संपत्ति वैभव पोजिशन ये कैसे आपकी होगी। आइए इसी एक बात के साथ बढ़ते हैं हमारे जीवन के सफर में आगे। सुनते रहिए जीवन आधार और रहिए सताक्षी के साथ।

जीवन को जानने की समझने की एक और कोशिश जीवन आधार रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM पर आप सुन रहे हैं सताक्षी के साथ, और इसी कोशिश के साथ एक और गीत के साथ आगे बढ़ेंगे। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, मुझे सुनते रहिए और सुनते रहिए जीवन आधार।

धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। यानी मन में धीरज रखने से ही सब कुछ होता है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला कभी भी आप ठीक से नहीं ले सकते। अब देखिए ना, अगर कोई माली किसी पेड़ को सौ घड़े पानी से भी सींचने लगे तो भी वो फल तो ऋतु आने पर ही देगा ना। ऐसा तो नहीं अगर आप उसमें बहुत सारा पानी डाल देंगे तो आपका पेड़ भी जल्दी बढ़ जाएगा और उसमें फल भी आ जाएंगे। सब कुछ वक्त के साथ ही होता है, इसीलिए हर चीज को समय दीजिए, वक्त दीजिए और वक्त पर छोड़ दीजिए। आइए इसी बात पर एक और गाने के साथ बढ़ते हैं हमारे जीवन आधार में आगे। सुनते रहिए रेडियो प्रसवानी सताक्षी के साथ।

श्रोताओं, ये था आज एक और जीवन के आधार से जुड़ा हमारा और आपका खास साथ जीवन आधार में। वक्त की अहमियत को ध्यान में रखते हुए और आपसे कल मिलने के वादे के साथ आज के सफर से अब लूंगी विदा, इजाजत, और कल जरूर लौट कर आऊंगी। तो कल जब तक आपसे अगली मुलाकात होती है तब तक अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।

गुड मॉर्निंग ब्रिस्बेन, नमस्कार दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी में प्रोग्राम जाने का सफर और मैं हूं आप सभी के बीच आपकी दोस्त और आपके होस्ट आरजी चांदनी जैन। सुबह का वक्त है, कॉफी का कप हाथ में है और अगर कॉफी अभी तक नहीं मिली ना तो कोई बात नहीं दोस्तों, ब्रिस्वानी की एनर्जी आपको जगा देगी। सो ब्रिस्बेन, आर यू रेडी? आज है ट्यूसडे यानी कि 11th ऑफ अगस्त और चलिए जी शुरू करते हैं एक फ्रेश मॉर्निंग के साथ। जी हाँ, हर सुबह एक नया चांस लेकर आती है भाई। कल जो नहीं हुआ जरूरी नहीं कि आज भी ना हो, तो स्माइल कीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ाइए बिकॉज योर मॉर्निंग स्टार्ट्स राइट नाउ। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं इस प्रोग्राम को इस गीत के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक जी रेडियो ब्रिस्वानी में। तो चलिए जी, अब वक्त है ब्रिस्वानी न्यूज अपडेट का। तो सबसे पहले हम ब्रिस्बेन के वेदर अपडेट जानेंगे। तो ब्रिस्बेन और साउथ ईस्ट जो क्विंसलैंड है, उनके लिसनर्स के लिए वेदर अपडेट इम्पोर्टेंट तो जरूर है। तो दोस्तों, लेटेस्ट लोकल रिपोर्ट्स में गस्टी विंड्स और शॉर्ट शावर्स जो है उसकी पॉसिबिलिटी बताई गई है। इसीलिए अगर आप मॉर्निंग कम्यूट के लिए भाई निकल रहे हैं ना, तो अम्ब्रेला या फिर लाइट रेन प्रोटेक्शन साथ रखना स्मार्ट रहेगा। और आज यानी कि 11th of August है, तो उसके फॉरकास्ट में दोस्तों ब्रिस्बेन के लिए टेम्परेचर्स रफली मिड 20 सेल्सियस के आसपास रहने की पॉसिबिलिटी है। तो मॉर्निंग थोड़ी सी भाई कूल और डे प्लेजेंट फील हो सकता है। तो दोस्तों, आज जो वेदर है प्यारा भी है, प्लेजेंट भी है, आप इंजॉय भी कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ हम इंजॉय करते हैं नेक्स्ट ट्रैक के साथ। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्बेन।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सो आइए अब ब्रिस्बेन लोकल क्राइम अपडेट की बात करें तो दोस्तों ब्रिस्बेन रीजन से एक सीरियस क्राइम इन्वेस्टिगेशन भी हेडलाइंस में है। एबीसी ब्रिस्बेन के मुताबिक 8 टीनेजर्स पर एक 21 ईयर ओल्ड मैन के एलिस्ट असॉल्ट के बाद दोस्तों डेथ के संबंध में मर्डर चार्जेस लगाए गए हैं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन के बीच केस कोर्ट प्रोसेस में है। इस तरह की न्यूज जो है ना दोस्तों हमें एक सिंपल रिमाइंडर देती है, वो है स्टे सेफ, लुक आफ्टर योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और किसी भी डेंजरस सिचुएशन को लाइटली मत लीजिएगा। ये बहुत ही सीरियस मैटर है तो इसमें अगर हम थोड़ा ध्यान रखेंगे खुद का भी और अपनी फैमिली का भी तो हम सेफ रह सकते हैं। तो आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, सुनते हैं नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रिस्बेन।

हाँ जी, तो आइए जी, अब थोड़ी सी ना सीरियस न्यूज को साइड में रखते हैं और करते हैं एक छोटी सी मॉर्निंग चैट विद योर फ्रेंड आरजे जानी। दोस्तों, वैसे आज सुबह ना जब आप घर से निकली, क्या आपने खुद से एक बार कहा कि आज का दिन मेरा है? नहीं कहा ना, तो देर मत कीजिए, मतलब देर भी नहीं हुई है, तो अब कह दीजिए, आज करे सो अब करे सो आज। तो इसीलिए जी भाई, देरी हो गई है तो कोई बात नहीं, अब देर मत कीजिए, उस चीज को आज कह दीजिए, अभी कह दीजिए। क्योंकि ना कभी कभी ना दोस्तों, मोटिवेशन बाहर से नहीं मिलती, खुद को खुद ही पुश करना पड़ता है। कोई बात नहीं, आज अगर ना ट्रैफिक स्लो है सो रिलैक्स, बॉस का मूड खराब है सो रिलैक्स, कॉफी गिर गई है ओके, ये थोड़ा सा सीरियस हो सकता है। लेकिन याद रखिएगा, एक बैड मोमेंट अगर लाइफ में है ना, या पूरे दिन में है, तो उस बैड मोमेंट को पूरा दिन खराब करने की परमिशन मत दीजिए। कोई बात नहीं, कुछ बुरा हो गया, टाल दीजिए उसको, मतलब हम कह सकते हैं ना, सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उस छोटी सी चीज से हम अपने पूरे दिन को खराब नहीं कर सकते। क्योंकि दोस्तों, पूरे दिन में और भी बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें जो है वो हुई होती है, उसको याद कीजिए और खुद को मोटिवेट हमेशा कीजिए। तो आइए, इसी के साथ सुनाती हूँ आपको नेक्स्ट ट्रैक ऑन योर रेडियो ब्रेस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, अब एंटरटेनमेंट की दुनिया में चलते हैं क्योंकि एंटरटेनमेंट भी बहुत जरूरी है। सो मेरे कॉमेडी लवर्स भाई, आपके लिए एक इंटरेस्टिंग अपडेट है। अमेरिकन कॉमेडियन अजीज अंसारी अपना जो हाइपोथेटिकल स्टैंड अप टूर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड लेकर आ रहे हैं, टूर में जो है ब्रिस्बेन भी इंक्लूडेड है, साथ ही सिडनी, मेलबर्न और ऑकलैंड जैसी सिटीज भी है। शोज जो है दोस्तों वो सितंबर और अक्टूबर 2026 में होने वाला है। तो भाई ब्रिस्बेन के कॉमेडी फैंस गेट रेडी टू लाफ। जी हाँ, बहुत हंसी आने वाली है, बहुत लोग हंसने वाले हैं क्योंकि अजीज अंसारी अपना जो अंदाज है वो लेकर आ रहे हैं भाई। सो आप भाई देर मत कीजिएगा, कह सकते हैं कि ये जो शोज है ना उसको आप जरूर अटेंड कीजिए क्योंकि हमारा जो स्ट्रेस होता है वो लेवल जो है ना वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है जब हम ऐसे शोज को अटेंड करते हैं। और साथ ही साथ म्यूजिक लवर्स के लिए भी एक इंटरेस्टिंग अपडेट है, वो क्या है जानेंगे इस म्यूजिक के बाद, गीत के बाद। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

हाँ जी, तो आइए म्यूजिक लवर्स के लिए भी थोड़ी इंटरेस्टिंग अपडेट दे ही देते हैं। गुड थिंग्स 2026 फेस्टिवल का लाइनअप ट्यूसडे यानी कि आज 11 अगस्त को 10 बजे मॉर्निंग में अनाउंस किया जाना है। और ऑलरेडी जो स्पेकुलेशन है उसमें लिम्प बिस्किट का नाम जो है वो काफी बस क्रिएट कर रहा है, तो आज म्यूजिक फैंस की नजर लाइनअप अनाउंसमेंट पर रहने वाली है। सो आइए इसके साथ हम स्पोर्ट्स अपडेट भी बात करेंगे, लेकिन उस अपडेट को जानने के लिए सुनेंगे ये गीत। उस गीत के बाद हम आपको स्पोर्ट्स अपडेट देने वाले हैं, क्योंकि स्पोर्ट्स लवर्स भाई वॉल्यूम आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए, क्योंकि आपके लिए भी बहुत सी ज्यादा अपडेट आने वाली है। सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी।

वेलकम बैक टू रेडियो ब्रिस्वानी में। सो दोस्तों, यहाँ पर आज हमने बहुत सारी बातें की है, लेकिन हमेशा मैं एंड में जाने से पहले आप सभी को छोटी सी कहानी ज़रूर सिखाती हूँ, जो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट करके जाती है और बहुत कुछ और बहुत बड़ा लेसन देकर जाती है। सो दोस्तों, जाने से पहले एक छोटी सी कहानी। एक बार एक लड़की रोज सुबह ना अपनी विंडो के पास खड़ी होकर सनराइज देखती है। एक दिन उसकी फ्रेंड ने पूछा, तुम रोज सनराइज क्यों देखती हो? फिर उसने कहा, मुझे याद रहता है कि हर दिन ना डार्कनेस के बाद लाइट जरूर आती है। बस दोस्तों, लाइफ भी ना कुछ ऐसी ही है। कभी डिफिकल्ट फेस होता है, कभी कंफ्यूजन होती है, कभी लगता है कुछ भी राइट नहीं हो रहा, लेकिन दोस्तों सनराइज जो है हमेशा आता है। सो इफ यू आर हैविंग अ डिफिकल्ट मॉर्निंग टूडे ना, सो कीप गोइंग बिकॉज योर सनराइज इज कमिंग। जी हाँ, तो इसी के साथ दोस्तों, अब रेडियो ब्रिस्वानी में जो प्रोग्राम चल रहा है चांदनी का सफर, उसे इजाजत लेने का समय आ चुका है। आज का रूल ना सिंपल बना लीजिए, अपनी ब्रिस्वानी मॉर्निंग वाइब को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल एंड एनर्जेटिक बनाने के लिए बस कुछ रूल्स है जो सिंपल है और उसे फॉलो कीजिए। यानी कि जो रूल नहीं अपनाने वो है ओवर थिंकिंग, नेगेटिव लोगों की बातें, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करना। ये सारी चीजों को आप छोड़ दीजिए, लेकिन जो चीज आपने अपनानी है वो है स्माइल, वर्क, एंजॉय एंड सबसे इम्पोर्टेंट, बिलीव इन योरसेल्फ। जी हाँ, और एक लाइन याद रखिए दोस्तों, आपकी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई, बेस्ट चैप्टर्स है ना अभी बाकी है। तो इसी के साथ अब दीजिए मुझे इजाजत दोस्तों, और हमेशा याद रखिए, वेदर चाहे जितना मर्जी क्लाउडी हो, मूड हमेशा सनी रहना चाहिए और सनी रखना चाहिए। सो ड्राइव सेफ, वर्क स्मार्ट, स्माइल मोर, और अपने लव्ड वन को एक बार जरूर बोलना हैव अ ब्यूटीफुल डे। और मैं अब आपको मिलूंगी कल इसी शो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, कीप शाइनिंग, एंड आप सभी हमेशा सुनते रहिए रेडियो ब्रिस्वानी। अब दीजिए मुझे इजाजत, टेक केयर, बाय बाय।

नमस्कार, मैं सताक्षी, आप सुन रहे हैं रेडियो बुस्वानी 1701 AM। आइए सुनते हैं अब तक की प्रमुख खबरें और सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खबरें। कोलंबिया में 7.4 रिएक्टर स्केल पर आया जोरदार भूकंप, भारी तबाही की आशंका। दक्षिण अमेरिकी देश कोलंबिया में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। 7.4 तीव्रता के इस भूकंप से कई इमारतों को नुकसान हुआ है और लोगों के घायल होने की भी खबर है। भूकंप के झटकों के कारण लोगों को अपने घरों और इमारतों को खाली करना पड़ा। भूकंप के झटके राजधानी बोगोटा और पड़ोसी देश वेनेजुएला और इक्वाडोर तक महसूस किए गए। पीओके में चुनाव के आखिरी चरण के लिए वोटिंग पीटीआई और जैक ने किया बहिष्कार। गुलाम जम्मू कश्मीर में तथाकथित विधानसभा चुनावों के लिए वोटिंग आखिरी चरण में पहुंच गई। इस दौरान सुरक्षा कड़ी कर दी गई और इलाकों में इस्लामाबाद समर्थित खबरें भी सामने आई। इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की पीओजेके यूनिट और पाकिस्तान में प्रतिबंधित ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी जैक के बहिष्कार के आह्वान के बावजूद वोटिंग हुई। आइए जुड़ते हैं भारत से और सुनते हैं भारतीय खबरें। पहली बार लाल किले के प्राचीर से गाया जाएगा वंदे मातरम। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के समारोह के दौरान पहली बार लाल किले की प्राचीर से वंदे मातरम गाया जाएगा। इस समारोह की अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये मौका वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का भी प्रतीक होगा। पीएम मोदी दिल्ली के इस ऐतिहासिक स्मारक से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। जंतर मंतर प्रोटेस्ट में लाठीचार्ज पर जवाब देंगे अमित शाह, संसद में चर्चा के लिए सरकार तैयार। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार संसद में छात्र विरोध प्रदर्शनों पर चर्चा कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। विपक्ष की मांग को स्वीकार करते हुए सरकार ने इस पर सहमति जताई है कि गृह मंत्री अमित शाह संसद में उपस्थित होकर दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्यवाही का जवाब देंगे और स्थिति स्पष्ट करेंगे। हालांकि मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि विपक्ष को संसद की कार्यवाही के दौरान हंगामा नहीं करना चाहिए। रिजिजू ने कहा कि सरकार का प्रस्ताव बिल्कुल साफ है कि वो छात्रों के आंदोलन और उससे जुड़ी गतिविधियों पर पूरी और विस्तृत चर्चा के लिए तैयार है। ये थी अब तक की प्रमुख खबरें। अगली खबरों के साथ जल्द होगी मुलाकात। सुनते रहिए रेडियो प्रेस वाणी और सताक्षी को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: और दोस्तों देखिए, ब्लड प्रेशर जो चीज़ है, डोंट इग्नोर इट. अगर आप ऑलरेडी ऑन मेडिकेशन है तो डोंट बी अ स्मार्ट एलेक एंड से ना ना, आई एम गॉट अंडर कंट्रोल, बिकॉज आई नो समवन हु वाज थिंकिंग दैट वे एंड ही हैड अ मैसिव स्ट्रोक. सो यू मस्ट ऑलवेज मॉनिटर योरसेल्फ. अपना मेडिकेशन राइट रखे दोस्तों, और टू रियली डू इट विदाउट द मेडिकेशन यू हैव टू बी वेरी वेरी कमिटेड. And which is not easy to do, okay? So, it's a silent killer, they say. And always have it checked out. पहले जमाने में जब हम डॉक्टर पास जाते, पहले वो चेक करते. आजकल करते कि नहीं?
1: नहीं.
0: आजकल they don't do it.
1: Not all the time.
0: Before, the first thing the doctor used to do was check for your pressure.
1: Yes.
0: Okay. वही डॉक्टर अच्छा है जो शुरू में आपका प्रेशर चेक कर लेता है. And then you have that white coat syndrome, no?
1: Yeah, white coat syndrome.
0: जबकि आप देखते हैं डॉक्टर का तो प्रेशर वैसे ऊपर हो जाता है.
1: एंड स्पेशली इफ यू नो दे टेकिंग योर प्रेशर इज हाई. या एनीवे
0: दैट्स व्हाई दे डोंट टेक इट एनीमोर, बिकॉज़ इट कैन गेट वरी द पेशेंट्स. आई मीन
1: या
0: फॉर नॉट टू. या ओके,
1: एनीवे 7:32.
0: यप.
1: सो हैप्पी बर्थडे इफ यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे टुडे. एंड टुडे इज निकोस बर्थडे, इजंट इट? Happy birthday, Nico, if you are listening.
0: And who's Nico?
1: Who's Nico? Your little baby.
0: This little rascal.
1: He is not a little rascal anymore. He's celebrating a milestone, if my calculation is correct.
0: Oh, happy birthday, Nico. I better send him a right now.
1: And a happy anniversary if you're celebrating your anniversary today. Now, I hope this is the correct song. I think this is the one. Mm-hmm. I think this is one of Nico's favorite songs. Okay.
0: Oh, I know which one.
1: Let's see.
0: Okay.

0: ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਮੁਫਤ ਕਿੱਟ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਾਇਰ ਐਂਟਸ QLD ਖੋਜੋ ਜਾਂ 132 ANT ਯਾਨੀ ਕਿ 132-268 ਉੱਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ ਹੈ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ। ਨਵੀਂ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ 4000 ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ 53,500 ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅ ਪਲੇਸ ਟੂ ਕਾਲ ਹੋਮ ਖੋਜੋ। ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ ਵੱਲੋਂ ਅਧਿਕਾਰਤ। ਆਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਬਾਈ ਦਾ ਕੁਈਨਜ਼ਲੈਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬ੍ਰਿਸਬੇਨ।
1: जी हाँ दोस्तों, वापस आ गए हैं और एक बार फिर अगर अभी आपने रेडियो ऑन किए हैं तो इसके लिए आपको पहले तो हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि अपना हमको आपने समझा, इसलिए आया ना
2: जी।
1: हाँ चलिए, हमारे साथ पंडित जी है। पंडित जी नमस्कार।
3: नमस्कार जतीश जी। तो हम दो चार बातें बोलना चाहते थे आपके साथ, शेयर करना चाहते थे कि
1: जरूर
3: सेंसस वाली तो आपने बोल दिया है। कुछ कुछ लोग इसका बहस कर करते हैं ना कि हम करेंगे तो हमारा सब इन्फॉर्मेशन गमन के लिए। गमन तो सब कुछ जानता ही है पहले से।
1: सेंसस लेते रहते हमेशा ना, कितना लोग है।
3: हाँ वो तो होते रहता है, हमें पता नहीं चलता है वो।
1: सही बात,
3: लेकिन लोगों को करना चाहिए कि हमारे देश के उन्नति के लिए ही होता ना।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
3: तो दूसरी बात है कि जो हमारा क्रिश्चियन अष्टमी आ रहा है 29 अगस्त से लेकर 4 सितंबर तक, जगह जगह पर होगा, सनातन धर्म में भी होगा और जगह घर घर पर भी होंगे। ब्रह्मांड मंडली हमारे घर भी कर रहा है, आप दोनों का निमंत्रण है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू।
3: और तो हमें बहुत दिन बाद मौका मिला, लगभग 26 ईयर्स बाद, क्योंकि समय इप्सिच में हम रहे तो आपको ख्याल होगा कि हमारे घर होता था ये सब ना।
1: जी जी हाँ जी।
3: जब से ब्रिस्बेन मूव हो गए तब फिर बीच में पंडित सालिकराम जी के घर पर हो रहा था
1: जी हाँ,
3: हर साल
1: जी जी।
3: और वहां से फिर घर घर होने का शुरू हो गया अब ना।
1: जी जी।
3: फिर बैक टू ओल्ड सिस्टम
1: पहले वाला सिस्टम था जी,
3: वही फिर चल रहा है घर घर पर अब होता है। तो वो अष्टमी की वो संदेशा थी। और दो ग्रहण लग रहे हैं, शायद लोग सोचेंगे कि हमारे जो सनातन धर्म के कैलेंडर है और कैलेंडर है और जयंत्री भी है, नहीं बोल रहा इंडिया वाला।
1: कुछ रेडियो पर भी आया था सुबह, मैं सुन रहा था
3: जी। तो 12th मतलब कल ही लग रहा ना, वेंसडे को। तो 16 eclipse होगा जो कि उधर यूके में दिखाएगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा।
3: उनका सनसेट होगा और हम लोग का इधर तो फिर थर्सडे मॉर्निंग हो जाएगा ना।
1: जी जी जी।
3: तो यहाँ दिखता नहीं, लेकिन 16 eclipse है 12 तारीख को।
1: हमने महसूस कर पाएंगे लेकिन जानवर लोग महसूस कर लेते। जी हाँ
3: हाँ जी, वो तो है। जब कभी कभी लोग बोलते हैं कि उसको हम मानता नहीं देते, क्योंकि साइंस की तरफ अगर देखे तो आप बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि उसका जो इफेक्ट ना
1: जी बिल्कुल
3: रेज वो सब नहीं मिलता है हमें, बेड रेज नहीं मिलता है या अल्ट्रावायलेट रेज जो कुछ भी होता है
1: जी हाँ।
3: लेकिन हम कभी कभी लोगों से पूछते हैं, अगर आपका पिता हो अमेरिका में हो और आप ऑस्ट्रेलिया में है, माता पिता बीमार हैं या गुजर गए हैं, तो माता पिता थे कि नहीं थे। तो अगर वो तो, हम लोग क्योंकि हम लोग धार्मिक दृष्टि से देखते हैं ना।
1: वैसे तो साइंस भी कहा है पंडित जी कि कुछ ऐसे बैक्टीरियल है जो बैक्टीरिया उस समय एक्टिव होता है जब ए सन रेस बंद होता है दिन के समय, दे नॉट एक्टिव एट नाइट ओनली इन द डे। और वो तो सन से हाँ सूरज से
3: है ना।
1: जी हाँ,
3: लेकिन हम लोग का सिस्टम संस्कृति और भारतीय संस्कार के तरफ से हम लोग उसको देखते हैं ना।
1: जी जी।
3: तो हमारा डिफरेंट होता है, केवल साइंस नहीं है।
1: हाँ
3: अगर साइंस लो तो हाँ वो बात है,
1: लेकिन फिर भी वो भी साइंटिफिक बात है, हमारे जो बिलीफ है वो भी साइंटिफिक है, वही बात है ना,
3: दोनों मिलाकर है हमारा, है ना।
1: हाँ हाँ हाँ
3: और अंग्रेजी वाला केवल साइंस की तरफ जाते
1: जी हाँ जी हाँ।
3: अब दूसरा इक्लिप्स लग रहा है जो लूना इक्लिप्स आने है, चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण जिस दिन या अष्टमी शुरू होता है, क्योंकि वो फुल मून के बाद ना
1: जी
3: डार्क नाइट से अष्टमी शुरू होती है
1: जी,
3: तो फुल मून को भी ग्रहण लग रहा है, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन टाइम 5:30 के लगभग शुरू होता है शाम को 28 को, और 28 को 6 बजे खत्म हो जाता। तो हम लोग मतलब कि ग्रहण कभी कभी हम लोग करते हैं कि पूजा के सामान वगैरह मिठाई वगैरह पहले से नहीं बनाते हैं ना, जब ग्रहण लगता है तो उसके बाद काम शुरू करते हैं, तो हम लोग उधर क्लियर हो जाएंगे ना 28 रात को
1: जी, फिर वही साइंटिफिक बात हो शायद मेरे ख्याल से, वही
3: बात
1: है
3: जी, जी। तो भी हम लोग देख नहीं पाएंगे
1: जी जी
3: दोनों, क्योंकि एक दिन ही होगा हमारा 5:30 और 6 के बीच में जब लगेगा
1: जी जी जी जी,
3: तो हमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन उधर साउथ पैसिफिक में दिखाईगा, अमेरिका है ना, साउथ अमेरिका इत्यादि में पैसिफिक ओशन में दिखाई देगा।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: तो क्योंकि उस समय मून निकलेगा ना
1: जी जी,
3: हम लोग आते आते तो खत्म हो जाएगा
1: जी, टाइम हो जाएगा
2: जी। अर्पण जी, वो रक्षाबंधन है ना 28th,
3: रक्षाबंधन भी है जी। हाँ, तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि रक्षाबंधन बंधन वो मतलब जिस दिन 28 को तो लगेगा, लेकिन हमारा 29th को खत्म हो जाएगा ना।
2: हाँ,
3: मतलब उसी दिन तो रक्षाबंधन है 28 को ना
2: जी।
1: अच्छा अच्छा,
3: तो इसी तरह से हम देखते हैं जितीश जी
1: जी। तो ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आप इन्फॉर्मेशन।
3: रक्षाबंधन अभी तो मतलब वेंसडे के बाद, थर्सडे से आप रक्षाबंधन बांध सकते हैं।
1: अच्छा ओके,
3: क्योंकि श्रावण शुक्ल पक्ष शुरू हो जाएगा थर्सडे से ना।
1: अच्छा अच्छा अच्छा,
3: थर्सडे से पूरी बांधो, जिस दिन है 28 को तो उस दिन तो ग्रहण लग रहा है, हम अगर हम लोग विश्वास करते हैं तो शाम के समय लग रहा है, सुबह बांध ले।
1: अच्छा
2: जी,
1: ठीक है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: तो रक्षा बंधन हम रोज एक दूसरा का रक्षा करते हैं
1: जी,
3: हाथ लेते हैं तो रोज ही रक्षा बंधन है,
1: रोज रक्षा, क्यों नहीं, सही बात है।
3: जैसे मदर्स डे फादर्स डे बोलते हैं
1: वो तो हर दिन है
3: जी। अच्छा जी, तो
1: थैंक यू, थैंक यू,
2: धन्यवाद।
1: नमस्कार, मुझे जब हम बातें कर रहे थे एक गाना याद आया, बहुत पुराना गाना है।
2: ओके,
1: It's nice.
2: Yeah, yeah, play it.
1: Because we all see the same moon, we all see the same sun around the world, na?
2: Yeah.
1: Ek hi to chand, ek hi to moon hai na?
2: Yeah.
1: Hai ki nahi?
2: Ji.
1: Acha, to chalo, ek gana yaad aa gaya. Thoda purane samay ka hoon main. To maine socha chalo baja do. Aur shayad aapko bhi shayad pasand aa jaye. पहले जमाने में टेलीग्राम में सब नहीं हुआ करता था, चांद से मैसेज भेजते थे, कबूतरों से

0: जानने
1: यार भी एक ऐसा इंसिडेंट है दोस्तों, पहले जमाने में जब कुछ मौका नहीं मिलता था तो विशफुल थिंकिंग था ना कि चंदा तू मेरे प्यार तक चले जाए और मैसेज लेकर। वाह वाह,
2: सो मच ऑफ
1: बात है, बहुत सुंदर गाना,
2: सो मच ऑफ होप है।
1: People live with hope, eh? Dekhe, six planets will be in alignment tomorrow early morning. Mercury, Mars, Jupiter, Saturn and Uranus and Neptune stretching across the sky east to southeast. और कल अगर आपने स्काई देखे होंगे दोस्तों तो एक बहुत ब्राइट लाइट दिखाई दे रहा था 10 मिनट तक। दिस वॉज the स्पेस शटल एक्स का कुछ था। We were only able to see it for 10 minutes. And Shahil told me it was so bright, so bright. So, agar aapne dekhi honge, soch rahenge ki kya hai. So that's what it was. Theek hai?
2: Ji.
1: Aur kya main kahun aap logon se? Dekhiye dosto. Kehte hain ki zindagi naya mauka dene se pehle aapki umar nahi poochti. Theek hai? Bita hua kal hame तजुर्बा देते हैं, आज एक नया मौका देता है, ठीक है, और आने वाला कल नई उम्मीद लेकर आती है, आता है राधा, और इसीलिए आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि एक छोटा सा कदम भी एक खूबसूरत नए सफर की शुरुआत बन सकती है, ठीक है। सो वेलकम द डे, और सी व्हाट कंस्ट्रक्टिव थिंग यू कैन डू टुडे, ऑलराइट, सोचे कि आप क्या कर सकते हैं। कंस्ट्रक्टिव थिंग, लुक्स लाइक माय माइक वाजंट वर्किंग प्रॉपर्ली।
2: ओह नो।
1: ओके, और इस गीत को सुनते हैं दोस्तों।

0: सोचा नहीं।
1: हाँ ऐसा हो जाएगा, मैं भी सोचा नहीं था दोस्तों। ओके और क्या, ऑलराइट भाई टेक्स्ट आ रहे हैं बहुत, थैंक यू विनी।
2: गुड मॉर्निंग विनी,
1: गुड मॉर्निंग। ओके दोस्तों, अगर आपका पास भी कोई चॉइस आप सुनना चाहते हैं तो यू कैन सेंड अस अ मैसेज। इतने लोग रेडियो सुन रहे हैं, कभी कोई एक मैसेज नहीं भेजता। आई एम अपसेट, आर यू?
2: नो
1: नो, व्हाई? बिकॉज दे आर लिसनिंग, राइट?
2: बिकॉज वी नो दे विद अस, हम साथ साथ है ना।
1: ओह
2: नो, दे डेफिनेटली आर विद अस, दे जस्ट प्रॉब्ली एंजॉयिंग व्हाटएवर।
1: या ओके,
2: व्हाई रुइन इट?
1: नो, आई एम नॉट रुइनिंग इट। Maybe they like our selections.
2: Maybe.
1: Maybe.
2: Well, I hope so.
1: Well, maybe they will like this one too.
2: Okay, hopefully. Let's hear it.
1: Hopefully.

0: जी हाँ दोस्तों, ऋतिक रोशन और प्रीति जिंटा का जो ये सीन था, मैंने सोचा कि ये शायद यूसेमिटी माउंटेन्स में किया गया था, बिल्कुल इसी तरह लग रहा था, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये जो सीन है नेशनल पार्क इन एल्बर्टा, वहां पर शूट किया गया था, और इन द कैनेडियन रॉकीज, और इस जगह का नाम जो दिया गया है, जो माउंटेन, इसका नाम है बन्फ, BANFF। बहुत सुंदर जगह है दोस्तों, और अगर आप कभी गए हैं तो आप देखेंगे कि इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, ड्राइविंग फ्रॉम वैंकूवर टू ऑल द वे टू एल्बर्टा एल्बर्टन। यू नो आई ड्रोव ऑल द वे फ्रॉम कैलिफोर्निया विदाउट स्टॉपिंग बिकॉज आई कुड स्टॉप, देयर वर नो होटल, समथिंग वाज हैपनिंग दैट टाइम ऑफ द ईयर, एंड एज यू वेंट इंटीरियर पीपल वुड लॉक द डोर्स बिकॉज दे वर बिट स्केयर्ड, दे आर नॉट यूज्ड टू यू। I went through places where the population was only 100, maybe 50, and sometimes like weeds growing on the road, you know, I don't know how I took that road. So I went from Vancouver all the way through all the different states, Idaho and all that, all the way up to Calgary. Then from there, I didn't stop in Calgary, I went to Edmonton. And about 15 minutes away from place where I was going, I couldn't drive anymore. I went across the Rockies and everything. Oh, it was a beautiful ride.
1: I can imagine the scenery.
0: Oh, it was so beautiful, I tell you. But I think it was 2 days of driving. Anyway, those were the good young days, you know.
1: The good old days.
0: Good old days.
1: They know
0: good
1: more.
0: Old days when I was young.
1: Yes. They know more.
0: Yeah.
1: That's anyway. A problem, eh? I mean, like, we could do so much of traveling back then.
0: Yeah.
1: And like...
0: I went through the Salt Lake City and we get bitten by mosquitoes there. Oh, my God. Big size mosquitoes. Oof. So, anyway. But it was beautiful when you go across. Jab Rockies cross aap jaoge, bahut sundar jagah dosto. And most of you people jo aap drive kiye honge, Vancouver se idhar east ward, you see how beautiful the drive is through the Rockies and all that. Kabhi mauka mile to aap zarur jaakar dekhe dosto. Okay, it is 8:10.
1: 8:10.
0: Yeah, 8:10 हो गए दोस्तों. और याद रखिए, आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ इस कार्यक्रम के बाद में, और फिर 11 बजे से संदेश के साथ, 3 बजे से निविया के साथ. चलिए.

0: से झनकार से है दिल के तार में तब से।
1: ओके, नाइस सॉन्ग, थैंक यू वेरी मच फॉर दैट सॉन्ग। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, मेजर अर्थक्वेक इन कोलंबिया, एटलीस्ट 111 पीपल हैव डाइड आफ्टर मैग्नीट्यूड 7.4, कैन इमेजिन दैट। अर्थक्वेक स्ट्रक वेस्टर्न कोलंबिया, बिल्डिंग्स कोलैप्स्ड अक्रॉस कैली पेरेरा and surrounding cities, while rescue team continue searching through rubble. Okay, tropical storm Dolphin hits China. What a lovely name, Dolphin. It's a storm. I don't think their name is wrong.
2: The two don't go together. No. A dolphin is so cute and calm.
1: That's right, yeah. Heavy rain and flooding are affecting eastern China after the storm made landfall as a typhoon. Around 760,000 people were evacuated, while hundreds of

0: जी हाँ दोस्तों, रेडियो बिजवानी आप सुन रहे हैं। और देखिए, अ फ्रॉग अराइव्स फ्री विद सैलड इन एन एस्पेरांस राइट एन एस्पेरांस हाउस होल्ड फाउंड अ लाइव फ्रॉग इनसाइड अ सील्ड वूलवर्थ्स लेटस बैग।
1: Oh my goodness.
0: They named him Greg. Yeah. And released him near a dam while playing the song Crazy Frog. Woolworths ka naya offer. Lettuce kharido, swimming champion bilkul free. Okay. Today's not Wednesday. Today's Tuesday.
1: Yeah. We're nearly there.
0: We're always in Wednesday mood.
1: We're nearly there.
0: और हाँ दोस्तों, अगर अभी आपने चुनिंग किया है, चलो आपका स्वागत है रेडियो बिजवानी पर।

0: और देखिए दोस्तों, कभी कभी ऐसे कुछ अच्छे अच्छे बातें आ जाते हैं जो अच्छा लगता है। और जैसे कि हम मोबाइल की बैटरी जब 20% होती है ना, तो चार्जर ढूंढने लगते हैं, है कि लेकिन लेकिन जब रिश्तों की बैटरी लो हो जाती है तो चार्जर की जगह ईगो निकाल लेते हैं। आज ईगो को साइड में रखिए, यानी इसको गोली मारिए और किसी अपने से जुड़ जाइए।
1: अकिया से गोली मारे
0: वही, दैट्स अ नाइस सॉन्ग, अ नाइस सॉन्ग। अकिया से गोली मारे, यू प्ले
1: से
0: दिस,
1: गोली
0: हे गॉट
1: मारे
0: इट।
1: We need to get the old version because we're in that zone now, right? The original, basically.
0: अखियों से गोली मारे, दैट वन।
1: Yeah.
0: मारो गोली अखियों से, है नहीं है? अखियों से गोली मारे, क्या क्या लिरिक्स लिख देते हैं, सुनने सोचने वाली बात है दोस्तों, है कि नहीं? दैट्स सो गुड है। कभी अखियों से गोली मारे, हाँ, तीर चला कर ये तो ना पूछो, दैट्स अनदर गुड सॉन्ग।
1: कुछ है
0: दिल है कहाँ और क्या,
1: हाँ
0: दैट सॉन्ग, डू यू नो दैट सॉन्ग?
1: लेट्स
0: कोई
1: सी
0: बता दे, हाँ कोई बता दे, यू नो दैट वन? देखो मैं खोज रहा हूँ, शायद मिल गया तो ठीक है।
1: व्हिच वन यू फाइंडिंग
0: कोई बता दे, दिल है कहाँ? लेट्स सी इफ आई कैन गेट इट। ओके लेडी विजवानी, यू सेड यू गोइंग टुवर्ड्स द ओल्ड सॉन्ग, राइट? राइट, ओके। तो चलिए दोस्तों, ये जो गीत है शायद आपको भी अच्छा लग जाए, अगर लग गया तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर क्या करेंगे दोस्तों?
1: गाने और कुछ
0: कोई ना
1: यादें
0: कोई है वहां पर, कभी ना कभी किसी ना किसी को।

दिल लेफ्ट में है, अगर आप देख रहे हैं तो आपके राइट हैंड साइड है, इजंट इट? ओके, अब हमें यहां से जो ये प्रोग्राम का समाप्त करना है दोस्तों, और यहां से हमें जाना है, और अब इसके बाद में आप हो जाएंगे सताक्षी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, मिलते हैं कल। नमस्ते।

0: गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ये अलार्म नहीं है भाई सुबह का, ये तो सताक्षी की गुड मॉर्निंग है आपसे और खासकर उनसे जिनको अभी भी गुड मॉर्निंग करने का बिल्कुल दिल नहीं है। देखिए उठ जाइए, सुबह जो है वो ढेर सारे एहसास तो आपके लिए लेकर आती ही है, लेकिन एक चीज और है जो खास आपके लिए हर रोज नई सुबह लेकर आती है, आपकी जिंदगी में एक नया दिन और आपके लिए एक नया मौका उन ख्वाहिशों को पूरा करने का जिन्हें आप बेसब्री से पूरा करना चाहते थे कल रात को। बस यही सोच रहे थे कि एक दिन और मिल जाता तो बस हम कर ही डालते इसे पूरा। तो चलिए आज फटाफट से उठ जाइए और इन ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए आज जो ये दिन आपको मिला है इसे जाया मत करिए, इसे वेस्ट मत कीजिए और इसको खूबसूरत बनाइए अपने नए एहसासों और मोहब्बत के साथ। मैं हूँ सताक्षी दोस्तों रेडियो ब्रिस्वानी पर आज एक बार फिर से, और मेरे साथ हैं बॉलीवुड के कई बेहतरीन गाने, ऐसे मॉर्निंग ट्रैक्स जो आपको एक बार फिर से रिफ्रेश कर देंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मिलके आज के इस जर्नी की इस अगले ट्रैक के साथ। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्वानी, सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस।
1: असूलों पर जहां आ जाए टकराना जरूरी है, बंदा जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है, बंदा हो तो जिंदा हो।

इटहैपेंस एंजॉय कर रहे हैं दोस्तों आप रेडियो ब्रिस्बेन 1701 एफएम पर सताक्षी के साथ। आगे बढ़ूं उसके पहले जो खास दिन जिनका आज है उनको हम विश करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। रेडियो ब्रिस्बेन विश करता है उन्हें जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन की बर्थडे की ढेरों ढेर शुभकामनाएं और आपकी जो जिंदगी है महकती रहे, खुशियों से चहकती रहे और आप हर दिन इस जिंदगी को खूबसूरती से जीते रहे, अपनी जिंदगी में पॉजिटिव रहे और सेल्फ लव की तरफ जरूर बढ़ते रहे क्योंकि खुद से मोहब्बत बाबू मशाय बहुत जरूरी है। और जिनके लिए आज का दिन स्पेशल इसलिए है क्योंकि उन्हें मोहब्बत खुद से नहीं किसी और से हो रखी है, तो भाई शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक। लेकिन चाहे वेडिंग एनिवर्सरी आप इसलिए मना रहे हैं क्योंकि लव मैरिज हुई थी या फिर आपकी हुई थी अरेंज मैरिज, देखिए मैरिज तो मैरिज है और मैरिज के बाद चाहे लव हो या अरेंज हो बीवी बीवी होती है। और आप ना भी चाहे तो भी वो आपको बता देंगी कि भाई आज कुछ स्पेशल करना है, तो उनको बताने का मौका मत दीजिए और आप अपनी वेडिंग एनिवर्सरी को और भी खास बनाइए और आज एक दूसरे के साथ एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कीजिए ताकि जो रोज की जद्दोजहद है, स्ट्रगल्स है, उनके चलते आप एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते, आज वो वक्त आप जरूर दें। जिनके लिए आज का दिन स्पेशल और खास है उन सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आप सबको डेडिकेट करेंगे ये अगला ट्रैक। स्टे ट्यून्ड रेडियो ब्रिस्बेन सताक्षी के साथ, सुनते रहिए इट हैपेंस।

0: energy.
1: Baby, ko best pasand hai.
2: बढ़ती हुई महंगाई और राइजिंग लिविंग कॉस्ट के साथ कौन नहीं चाहेगा जीतना कुछ फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स, जिससे खर्चों में थोड़ी आसानी हो जाए। डिजिसेल आपको दे रहा है मौका टू विन वन ऑफ द फ्यूल वाउचर्स और शॉपिंग वाउचर्स वर्थ $100 एवरी वीक। जस्ट सेंड $30 टॉप अप और $300 मनी ट्रांसफर टू योर फैमिली एंड फ्रेंड्स इन फिजी एंड बी इन द ड्रॉ। और जानकारी के लिए विजिट करें digicelpacific.com।
3: It's time to complete your census. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. You can take part online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages and is offered online and by phone. And remember, include everyone staying in your home on census night, including children, babies and visitors. The census helps build a picture of Australia. It informs planning for things like schools, community services, healthcare and transport. When you take part, you help make sure your language, culture and community are represented. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.

वेलकम बैक, इट हैपेंस में सताक्षी के साथ हैं आप रेडियो ब्रिस्वानी 1701 एम पर। कई बार मैंने लोगों को कहते सुना है कि किस्मत सब बदल देगी। दोस्तों, किस्मत कभी कुछ नहीं बदलती है। हाँ, ये बात अलग है कि कई बार हार जाने के बाद या

खुद के साथ। इसलिए चीजों को कल पर डालना या ये कहना कि किस्मत के साथ साथ चीजें संभल जाएंगी, सब ठीक हो जाएगा, ये तो सरासर खुद के साथ, खुद की जिंदगी के साथ, खुद के फ्यूचर और प्रेजेंट के साथ, दोनों के साथ ही नाइंसाफी है। आप क्या सोचते हैं? सही कह रही हूं ना? आइए फिर इसी बात पर मिलकर साथ सुनते हैं ये अगला गीत। एंजॉय कीजिए और सताक्षी के साथ सुनते रहिए इट हैपेंस रेडियो ब्रिस्वानी पर।

यू आर लिसनिंग टू इट हैपेंस रेडियो प्रस्वानी 1701 एम पर। और भाई देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी तसल्ली कौन सी है? सब ठीक हो जाएगा। ये लाइन जो है ये बहुत छोटी सी है और कई बार हमें लगता है कि ये कह देने से कि सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक थोड़ी ना हो जाता है। मगर यकीन मानिए, जेन्युइनली मैं बता रही हूँ,

कि मैंने ये नोटिस किया है, मैंने ये खुद पर्सनल एक्सपीरियंस किया है कि जिस वक्त आप अंदर से टूटे हुए होते हैं या सब कुछ बिखरा होता है ना, उस वक्त कोई अगर आपके कंधे पे हाथ रख के, आपके सर पर हाथ रख के ये बोल दे कि सब ठीक हो जाएगा, आपको बहुत तसल्ली मिलती है सच में। और इसीलिए इस लाइन को जो है दुनिया की सबसे तसल्ली भरी लाइन भी कहते हैं, और ज्यादातर लोग इस सेंटेंस को यूज भी करते हैं। डेफिनेटली किसी के कह देने से सब ठीक नहीं हो जाता है, लेकिन जिस वक्त आपको इस सेंटेंस की जरूरत होती है ना, ये सेंटेंस आपके बहुत काम आता है, आपके इमोशंस को हील करने का काम करता है ये। तो बस एक उम्मीद अपने अंदर जगाते हैं जैसे आप, वैसे ही दूसरों के अंदर भी जगाइए, और अगर कभी किसी को जरूरत हो इस सेंटेंस की तो उसे जरूर बोलिए। और सुनते रहिए सताक्षी के साथ इट हैपेंस। आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1071 AM।

0: मेरा नाम डॉक्टर कुमार है और यहाँ कुछ ऐसा है जिसे जानना अच्छा है। एक नया नेशनल लंग कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ है। ये सरल है, निशुल्क है और ये लक्षणों के सामने आने से पहले ही लंग कैंसर का पता लगा सकता है। यदि आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो हो सकता है कि आप ये सोचें कि बहुत देर हो चुकी है या इसके बारे में ना जानना ही बेहतर है। लेकिन क्या आपको पता है कि फेफड़ों के कैंसर की शुरुआत में पता लगाए गए 65% से अधिक मामलों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यदि आप 50 से 70 वर्ष की आयु के हैं और आपकी धूम्रपान करने की हिस्ट्री रही है तो अपने डॉक्टर से बात करें या lungcancerscreen.org.au पर जाएं।
1: भाई, मम्मी पापा की तबीयत की बहुत टेंशन रहती है यार। हम यहाँ ब्रिस्बेन में और वो इंडिया में अकेले हैं।
2: तो उमसॉक से बात कर, इंडिया में एल्डर्स और दिव्यांगनों के लिए इन होम केयर देते हैं एकदम प्रोफेशनल तरीके से।
1: हाँ, लेकिन भरोसा कैसे करूं?
2: अरे, उमसॉग एक ऑस्ट्रेलियन कंपनी मैपल केयर की सब्सिडियरी है और मैपल केयर NDIS का रजिस्टर्ड प्रोवाइडर है।
1: अच्छा, मतलब स्टैंडर्ड और रिस्क मैनेजमेंट भी ऑस्ट्रेलिया जैसा?
2: बिल्कुल, खाना, दवाई, हेल्थ चेक, सब कुछ जैसे आप खुद देख रहे हो।
1: फिर तो आज ही वेबसाइट देखनी पड़ेगी।
2: उनकी वेबसाइट www.omsorg.co.in है। भारत में नंबर +91 8448 381 360 है और ऑस्ट्रेलिया में 0470 631 801। प्यार और देखभाल की कोई दूरी नहीं होती भाई। ओमसॉक, केयरिंग विद डिग्निटी।
3: वेलकम बैक, इट हैपेंस सुन रहे हैं आप सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्वानी पर। और इट हैपेंस में हम हैं बैक टू बैक तीन गानों यानी कि गानों की हैट्रिक के साथ। आइए गानों की हैट्रिक का पहला ट्रैक सुनिए मेरे साथ।

जी हाँ, आप एंजॉय कर रहे हैं गानों की हैट्रिक। सताक्षी आपके साथ है और गानों की हैट्रिक में एक और बेहतरीन गाने के साथ आपको आगे लेकर चल रही हूँ। कीप लिसनिंग टू रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।

देखिए, आप जो भी हैं, जैसे भी हैं, आप परफेक्ट हैं, एकदम परफेक्ट। आपको किसी के भी जैसा बनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप अकेले ही काफी हैं, आपका किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। बस खुद पर यकीन रखिए और आप सबसे बेहतरीन हैं, सबसे स्ट्रांग हैं, सबसे बढ़िया इंसान हैं। ये बात हमेशा अपने दिमाग में रखिए। और आज सुनिए, सुबह का वक्त है, खुश रहा करिए। सुनते रहिए छापन सताक्षी के साथ रेडियो ब्रिस्पानी पर।

देखिए, हम लोगों को ना खुशियां तब मिलती हैं, हम खुश तब होते हैं, मुस्कुराते तब हैं, जब जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया, है ना। हम बहुत हैप्पी हो जाते हैं, अरे यार यही तो हमने चाहा था, ये कैसे मुझे मिल गया, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन जो आपके पास है, आप क्या कभी उसको लेके एक्साइटेड होते हैं? नहीं। लेकिन देखा जाए तो जिंदगी का असली एक्साइटमेंट उसी चीज में है। लेकिन अब मैं आपसे कहूँ ना कि देखिए आपके पीछे कितना अच्छा सोफा पड़ा हुआ है, कितनी बढ़िया डाइनिंग टेबल है, या कितना अच्छा ब्रेकफास्ट बना है आज, और लंच तो भाई लाजवाब बनने वाला है, क्या आप एक्साइटेड होंगे? नहीं, क्योंकि जो भी चीजें आपके आसपास हैं आप उनको लेकर कभी एक्साइटेड नहीं होते। जबकि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट की चीजें वही हैं कि यार हमारे पास है, सामने वाले के पास तो है ही नहीं। सामने वाले के पास भी क्या, मतलब बहुत सारे लोग इस दुनिया में हैं जिनके पास नहीं है। सो प्लीज प्लीज कोशिश कीजिए कि आपके पास जो चीजें हैं उनमें आप अपनी खुशियों को ढूंढना शुरू करें। पता है, हमारी लाइफ का आधा स्ट्रेस ना इस बात में है कि हमारे पास क्या नहीं है। आप सोच कर देखिए, मैंने बहुत सोचा है इस बारे में, और जो है हम उसे अक्सर अवॉइड करना शुरू करते हैं। तो बस लाइफ को एंजॉय कीजिए उन चीजों के साथ जो इस वक्त आपके पास है, जिनके साथ एक्चुअली अभी इसी मोमेंट में आप एंजॉय कर सकते हैं। बाकी चीजों के लिए तो बस वेट करना, जिसके लिए वेट करना उस इंतजार का क्या फायदा। हम तो उन चीजों में खुश हैं जिनके साथ आज हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। सोचिए और सुनते रहिए ठाकुर, आप सुन रहे हैं रेडियो ब्रिस्वानी 1701 AM।